0: निकलना। आगे क्या होगा? वेल, जो होगा अच्छा ही होगा, ये सोच के हम बढ़ते हैं आगे। मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा और हंगामे वाला गाना हो जाए। What do you think, guys? Radio Masti 24/7 coming up is Uff Banwadi. क्या गाना है, क्या मस्त।
1: Serious headlines with a not so serious vibe. Only on the morning show on Radio Masti 24/7.

0: पर दंगल के साउंडट्रैक से आप सुन रहे थे जनिता गांधी की ये अमेजिंग सी वॉइस विच इज पियर्सिंग थ्रू द एयरवेव्स ऑफ रेडियो मस्ती 24/7। गुड मॉर्निंग, इट्स द मॉर्निंग शो विद रेणुका।
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। न्यूज, व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
0: जी हाँ बिल्कुल, और ये पिंच ऑफ मस्ती के साथ साथ में मस्ती की यहाँ पर जो इमेज है वो कुछ ऐसी है जो मैं फैलाने के लिए आई हूँ। बिल्कुल मस्ती के साथ साथ आपको पूरी की पूरी खबरें देते हुए, दुनिया भर की, सीरियस हो या नॉन सीरियस हो। वेल हियर वी कम गाइस। कोई भी देश आज के दिन में, एज यू एंड आई ऑल नो, इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में। वेल यही बात हुई हमारे यहाँ पर जो शंग्रीला समिट हो रहा था, जी हाँ, द शंग्रीला डायलॉग, उसमें भी यही कहा गया कि नो कंट्री कैन अफोर्ड टू निग्लेक्ट इट्स ओन डिफेंस एंड ऑल नेशंस मस्ट इन्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ऐसा कहा फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी गिल्बर्टो थियोडोरो जूनियर ने। जी हाँ, कल ही के दिन में उन्होंने ये कहा कि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग क्यों बढ़ानी चाहिए। वेल ये सब हम जानते ही हैं, देयर इज नो वन कंट्री जो कि इस समय एग्जेम्प्ट है फ्रॉम बिल्डिंग अपना ही नेशनल डिफेंस। वेल इवन फॉर आसियान, अगर आप अपने इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज देखें, दे आर नॉट मैच्योर्ड, they're not evolving, then how can we as a bloc protect ourselves? Unka jo remark hai, well, it came after United States ke defense secretary ne ye kaha delegates ko that Washington expect kar raha hai apne Asian allies ko to raise defense spending to 3.5% of GDP. Well, that's quite a bit, guys. Isi ke saath saath baki sabhi ne react kiya ki ji haan, agar US ye keh raha hai, toh well, let's go ready. The US will not be the go-to country for protection when these countries do not put their fair share. Toh bhai, is baat ke baad mein lag raha hai ki ab aur paise jayenge humare defense mein. Filhaal ke liye chaliye, हम अपने डिफेंस में अगला गाना चलाते हैं यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। खबरें बनी रहेंगी पूरे 10 बजे तक। इफ यू वांट टू हियर समथिंग स्पेशल, आपको लग रहा है कि आपका कुछ गाना खास सुनने का मूड है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स अबाउट 8:13 बाय द स्टूडियो क्लॉक, और मैं रेणुका आपके साथ में। कमिंग अप सलामी एंड अनदर वन विद डीजे अखिल, कहीं मत जाइएगा।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: और रेडियो मस्ती 24/7 पर भी मैं ये तो बात कहती हूँ कि कुछ गाने जब दोबारा से बनते हैं या रीमिक्स होते हैं या कोई खास स्पेशल डीजे उनको प्ले करते हैं तो डेफिनेटली उनमें एक अलग ही अंदाज आ जाता है एंड यू एंजॉय नॉट ओनली द ओरिजिनल बट ऑल्सो द कॉपी और द री इन्वेंटेड वर्जन एज दे से. गुड मॉर्निंग, आई एम ऑल्सो द री इन्वेंटेड वर्जन ऑफ रेणुका ऑन अ पब्लिक हॉलीडे कीपिंग यू कंपनी सिंस 7 इन द मॉर्निंग गाइस. दिस इज द मॉर्निंग शो. गुड मॉर्निंग.
1: सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7.
0: न्यूज व्यूज एंड अ पिंच ऑफ मस्ती के साथ मैं आपके लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रही हूँ. अभी हाल ही में कुछ ही देर पहले पता लगा है कि इजरायली ट्रूप्स ने कैप्चर किया है स्ट्रेटेजिक माउंटेन टॉप्ड with a crusader built castle in southern Lebanon in the deepest incursion jo is desh ke andar wo ghuse hain in more than a quarter century. ji ha, military ne kaha hal hi mein, and this taking of Beaufort castle jo hai in near the city of Nebatihe, it is after days of airstrikes and intense fighting jo ki aaspaas ke gaon mein chal rahi thi between the Israeli troops and Hezbollah militants. ye jo capture hai, it marks a major Israeli advance in the latest Israel Hezbollah war jo ki March 2 ko shuru hua tha. aur jo Hezbollah hai, they fired rockets into northern Israel 2 days after the US and Israel attacked its main backer which is Iran. tab se lekar Israel jo hai unhone launch kiya hai ground invasion capturing dozens of Lebanese villages and towns closer to the border. aur Hezbollah ne launch kare hain thousands of missiles and drones at Israeli soldiers in southern Lebanon and northern Israel. well I don't want to be sounding like you know बंद करो लड़ाइयां, ये मत करो वो मत करो, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू से, बट आई डू वांट टू से दैट वर्ल्ड पीस इज द नीड ऑफ द आवर. एक तरफ ये सारी लड़ाइयां हो रही हैं, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इंक्रीज करो अपना डिफेंस का बजट. सो वेयर आर वी हेडेड, इट्स टाइम फॉर अस टू सिट बैक एंड थिंक अबाउट दैट अ लिटिल बिट गाइस. जब तक मैं चलाती हूँ ब्यूटीफुल सा रेट्रो, और ये सडनली रेट्रो क्यों आ रहा है 8:27 पर, वेल इसलिए आ रहा है क्योंकि सपना जी ने मुझे अभी भी कहा सुनो मैं बिजी जरूर हूं लेकिन सुन रही हूं. एंड व्हेनेवर शी सेज मैं सुन रही हूं तो मैं भी सुन रही हूं कि आपकी रिक्वेस्ट आप कहे ना कहे एक रेट्रो तो है ही. राइट, दिस इज रेणुका विद यू गाइस ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. स्टे ट्यून्ड.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: मैं कोई भी गुम होगा, मैं यहाँ की यही हूँ. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, वेलकम वंस अगेन. इट इज द मॉर्निंग शो ऑफ अ ब्यूटीफुल मंडे व्हिच हैपेंस टू बी अ पब्लिक हॉलिडे फॉर यू गाइस. बट हमने तो अपना नाम 24/7 कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया.
1: सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब, ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
0: राइट, सो लेट मी टेल यू कि सुबह का मेरा ना सबसे फेवरेट टाइम होता है चाय और साथ में एक आध बिस्किट. आई टेल यू, आई नो इट्स नॉट द हेल्दीएस्ट थिंग, प्लीज मुझे प्रीच मत करो, लेकिन मैं इतना बताऊं कि अगर मेरे को अपना अपना ओट्स वाला एक अच्छा सा बिस्किट मिल जाए और साथ में मुझे चाय मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए. एंड लिटरली मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई थिंक मुझे सुबह सुबह बस बोलना भी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में दो दो ऐसे शोज हैं जो कि सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका आपके साथ. वेल, खबर है ईस्ट कोस्ट सी फूड सेंटर की. आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस टाइम पर, उनका जंबो सी फूड एंड लॉन्ग बीच के साथ में कुछ ना कुछ रिश्ता तो जरूर रहा होगा आज तक, राइट? सो वेल, देयर इज गोइंग टू बी दिस रीडेवलपमेंट और सारे सारे एरिया को रीडेवलप किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू रिजुवनेट द फैसिलिटी एंड सराउंडिंग एरियाज, और साथ ही में ऑफकोर्स आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए. आप सोच सकते हैं कि जब विजिट करते हैं आप पार्क में, देन नेशनल पार्क को लगता है यार इनको और कुछ दिया जा सकता है. सो वेल, इसी वीकेंड पर उन्होंने ये कहा दैट जम्बो सी फूड बंद कर देगा अपना फ्लैगशिप आउटलेट जब उसकी लीज एक्सपायर हो जाएगी सितंबर 30th को, और जो लॉन्ग बीच है वो रिलोकेट करेगा टू कोस्टल प्लेग्रोव एट ईस्ट कोस्ट पार्क विच इज लाइक 8 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द करंट आउटलेट. ये पता लगा तो मेरे को तो यार बड़ा ही दुख हुआ, ये जंबो बंद क्यों कर रहा है अपना बीच वाला जो आउटलेट है ना, इट इज जस्ट वेरी डिफरेंट. बट एनीवे, अब बात कुछ ये है कि नॉर्थ जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं उन्होंने 2025 में ही सबको कह दिया था कि मार्च 2026 जब आपकी लीज खत्म हो उसके बाद एक्सटेंड ना किया जाए, बिल्कुल होगा भी नहीं. फिर उसके बाद 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन अब सितंबर के बाद यू विल नॉट बी एबल टू गो देयर अगेन. सो वेल, स्प्रेड द वर्ड गाइज. रेडियो मसी 24/7 पर मैं तो यही कहूंगी कि जाकर अपनी मेमोरीज बना लीजिए, क्योंकि कुछ सालों के बाद आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये कहेंगे देखो देखो देखो यहाँ पर ना ये होता था, देखो देखो देखो. That's the fun we all get, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. I've got 3-2 के साउंडट्रैक से ये वाला बढ़िया सा गाना जो अगेन आपको थोड़ा सा हिलाएगा, और उसके बाद एक ऐसा गाना है जिसमें दीपिका पादुकोण अपनी अमेजिंग सी बॉडी लेके हवा में लहरा रही थी. Think about it. Let me know if you know the answer. 9151896 is the telephone number. This is Renuka with you and this is the morning.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आई लव कनिका कपूर की आवाज इस गाने में। जी हाँ बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर का ये वाला गाना आपको शायद याद होगा कि लंबे लंबे ड्रेप्स में ब्यूटिफुली दीपिका पादुकोण लहरा रही थी हवा में। एंड इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग अमेजिंग कोरियोग्राफी, राइट। रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है हमारा और आपका
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज़, views and a pinch.

तब मैं सोचती हूँ सिस्टम भी कहता है कभी कभी मुझे नहीं काम करना, और मैं सोचती हूँ यार ऐसे मत कर, यार ऐसे मत कर, प्लीज मेरा साथ दे। रेडियो मस्ती 24/7 पर इट इज टाइम फॉर मी टू गिव यू सम अपडेट फ्रॉम बॉलीवुड या हॉलीवुड, दोनों का मिक्स कर देते हैं। चलिए, तो आपने ऑब्सेशन फिल्म का नाम सुना है क्या? वेल, दिस इज द मोस्ट मोस्ट लेटेस्ट हॉरर फिल्म, जी हाँ, जो कि इंडियन थिएटर्स में May 29th को रिलीज हुई, अपने US थिएटर्स में May 15th को हो गई थी। एंड डेफिनेटली इट हैज क्रिएटेड द सिग्निफिकेंट बज अमंग्स द मूवी गोअर्स एंड सेलिब्रिटीज। सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर, और ऑलरेडी कार्तिक आर्यन है या अनन्या पांडे है, मतलब नए वाले जो सारे एक्टर्स हैं उनको तो ऐसा लग रहा है कि वाह यार। बजट है 1 मिलियन का और कमा लिया है ऑलरेडी $100 million वर्ल्ड वाइड। कैन यू इमेजिन? इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हॉरर हिट्स ऑफ 2026। आई यूज टू लव हॉरर एट वन पॉइंट, लेकिन मुझे अचानक से ना अब ऐसा लगता नहीं यार, अब हॉरर और नहीं देखनी है। आई थिंक दिस इज एज कैचिंग अप। बट कार्तिक आर्यन, हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टू पब्लिकली प्रेज द फिल्म, उसने कहा भाई इन द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने एक्चुअली नहीं देखी है ऐसी बढ़िया हॉरर फिल्म। तो मैं भी ये कहूंगी, इफ यू एंजॉय हॉरर फिल्म्स एंड ऑब्सेशन इज द प्लेस टू गो, ऑलराइट, मैं भी देखने की कोशिश करूंगी 10-15 लोगों के साथ में फिलहाल के लिए। जिस दिन मेरे पास घर में 10-12 लोग और होंगे ना, ताकि मुझे डर ना लगे रात को। आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई वॉच्ड ईविल डेड और समथिंग लाइक दैट, आई कुडंट इवन क्रॉस फ्रॉम वन रूम टू द अदर, दैट्स समथिंग आई डोंट वांट टू डू। Radio Masti 24/7, it is Renuka, and of course it is the morning show.

0: वेलकम ऑन अगेन लॉर्ड रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ बिल्कुल, आप और मैं टिके हुए हैं यहाँ पर और चल रहा है हमारा और आपका द मॉर्निंग शो। मॉर्निंग शो पे रेनू का बस इस समय आपको इतनी ही खबर दे सकती है वेरी क्विकली, क्योंकि 9 बजने को है, दैट देयर हैव बीन 200, ओ माय गॉड, मैं भी साथ साथ में न्यूज ये वाली देख रही थी आज सुबह कि 200 से भी ज्यादा लोग इंजर हुए एंड वन पर्सन डाइड इन पेरिस फॉलोइंग पेरिस सेंट जर्मेन, जी हाँ जिसे कहते हैं सेंट जर्मेन सेकंड कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग विन, द इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया कल के दिन में। वेल दिस वॉज आफ्टर PSG ने आर्सेनल को हराया इन अ नेल बाइटिंग बुडापेस्ट पेनल्टी शूटआउट, जिसके साथ में उनकी जगह बन गई इन द थ्रोन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। फैंस जो हैं, दे वर टेकिंग टू शोसे मार्स ओपन स्पेस नियर द आइफल टावर एंड उसके बाद में विक्ट्री परेड के साथ साथ में ये सब कुछ हुआ। वेल लास्ट ईयर भी सेलिब्रेशंस ओवरशैडो हो गई थी बाय स्ट्रीट वायलेंस, तो ऐसा लगता है कि जहां पर गेम्स और स्पोर्ट्स लोगों को पास में लाती हैं वहीं पर कहीं ना कहीं वैंडलिज्म और कहीं ना कहीं स्ट्रीट्स पर लड़ाइयों की वजह से सारा का सारा मजा खराब हो जाता है। बट दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट गाइस। जी हाँ, बिलीव इट और नॉट, आई स्लेप्ट एट 2:30 इन द मॉर्निंग एंड हियर आई एम सिंस 7। ऐसी डेडिकेशन देखी है कहीं पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। छोटा सा ब्रेक एंड आई विल सी यू 9 बजने के उस पार। गुड मॉर्निंग।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore. Check it out.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: और 9 बजे के उस पार रेणुका आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर. ऐसा लगता है कि मॉर्निंग शो में इतनी खबरें होती हैं कि भाई जितना भी अपडेट करो आपको, बिकॉज सीरियसली वी गेट न्यूज फ्रॉम एटलीस्ट 10 पब्लिकेशंस एंड दैट्स हाउ वी डिसाइड कि आपको कौन सी अपडेट एकदम टॉप पर रखना है. उफ, इतनी मेहनत, दैट टू ऑन अ लॉन्ग वीकेंड. भाई एक मैसेज लिख के थोड़ा सा मेरे को इनकरेज.
1: रेडियो मस्ती 24/7. डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप.
3: टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप, ये भी वही कह रहा है, 9151896 3. बट फिलहाल के लिए मैं आपको मलेशिया की एक खबर देना चाहती हूँ. मलेशिया ने क्रिटिसाइज किया द डेफनिंग साइलेंस फ्रॉम मेजर पावर्स. जी हाँ, कल ही के दिन की एक खबर. दिस इज ओवर द कोलैप्स जो उसका डील हुआ विद नॉर्वे फॉर अ नेवल मिसाइल सिस्टम. जी हाँ, उसने ये कहा मलेशिया ने कि भाई दिस सेंड्स अ वेरी डेंजरस मैसेज अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स. किस तरह से दो देश सडनली एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करते, इज़न्ट दैट सरप्राइजिंग. बैक टू नॉर्वे की बात हो रही है. मलेशिया और नॉर्वे जो है दोनों के दोनों डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट में पड़ गए इस महीने, सिंस नॉर्वे रिवोक्ड एक्सपोर्ट अप्रूवल्स फॉर सर्टेन टेक्नोलॉजीज. ऑस्लो का ये कहना था कि ये जो मूव है इट हैज नॉट इंटेंशनली टारगेटेड मलेशिया, लेकिन कुआलालंपुर स्टिल सीकिंग मोर देन $251 million in compensation from the Norwegian company involved in the deal. Malaysia ke defense minister ne ye kaha ki bhai ye to bahut hi galat cheez hai. Lack of strong reaction from other countries to Norway's unilateral decision is also not good. Koi bhi serious concern raise nahi hua hai about the integrity of contracts or accountability. Main akela to nahi ladunga, aaj mere pe impact hai, kal tum par bhi ho sakta hai, right? Well, saath hi saath mein unhone criticize kiya he called double standards in the application of international law among developing nations and powerful countries or their allies. Well, Malaysia ab baat kar raha hai real partners ke saath mein to buy the missile system. Lag raha hai ki sari ki sari duniya seriously sirf aur sirf apne defense budget aur apne ko protect karne ki baaton mein hi laga hua hai. Arms khareedna and exactly how to protect the borders. Radio Masi 24/7 per going for another short break with two beautiful tracks, and I'm sure some of you really love dusra wala gana jo main chalane wali hu. Sunte saath saath is samay hue 9:03:26, and yes, it is your girl Renuka on Radio Masi 24/7.

0: 9:14 और 3 सेकंड यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका हमारा द मॉर्निंग शो हमारे देश विदेश की खबरें जी हाँ सुबह 7 बजे से आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। बातें तो हमने खूब सारी करी हैं सुबह से लेकर अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन ट्रेन्स की बात ना हो और न्यूज हो शो में तो भाई आधा अधूरा है। नहीं चलो सुनते हैं क्या चल रहा है सर्कल लाइन पर।
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
0: All right, let me give you a quick update, guys. When the circle line completes in July, trains jo hain display karengi apna direction as clockwise or anti-clockwise loops rather than the terminal station. Ye to bada hi alag si cheez ho rahi hai kyunki CCL jo hai does not operate as a complete loop. Trains display karengi apna direction by indicating the final station, जैसे कि हार्बर फ्रंट या धोबी घाट, और commuters को help करने के लिए to get used to the new system ahead of the opening, updated wayfinding signs भी appear होने लग जाएंगे at Promenade, Esplanade, Buena Vista and Paya Lebar stations. हो चुके हैं इनफैक्ट फ्राइडे से, आप जानते हैं आपने नोट किया कि नहीं, केपल कंटोनमेंट एंड प्रिंस एडवर्ड रोड स्टेशन जो है वो भी खुल जाएंगे पब्लिक प्रीव्यू के लिए July 4th को विद पैसेंजर सर्विसेज स्टार्टिंग July 12th। देयर ओपनिंग कंप्लीट्स द लूप अलाउिंग ट्रेन टू ट्रेवल द एंटायर सर्कल विदाउट अ डेजिग्नेटेड टर्मिनल। LTA ने हाल ही में ये कहा कि उन्होंने कंसल्ट किया है कम्यूटर्स एंड स्टेशन स्टाफ को टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दे फेस्ड नेविगेटिंग द CCL एंड कंडक्टेड अ पब्लिक सर्वे। जी हाँ, जो मार्च 2025 में हुआ था जिसमें 3000 से भी ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिले थे, और उसके बाद CCL ने ये सोचा कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे खुलने के बाद द यूनिक ऑपरेटिंग फीचर्स दैट रिक्वायर टेलर्ड वेफाइंडिंग सॉल्यूशंस टू हेल्प कम्यूटर्स नेविगेट द फुल लूप मोर इजिली। अब भाई ये लूप क्या है और क्या नहीं है, अगर आपने ट्रेवल किया है ओवरसीज और ट्रेन्स का इस्तेमाल किया है तो आप शायद समझ जाएंगे कि जिस तरह से यूरोप और इधर उधर होता है, समथिंग सिमिलर टू दैट, बट आई एम श्योर विद द इंटेलिजेंस दैट सिंगापुर शेयर्स यू विल आल्सो फिगर इट आउट इन नो टाइम। ऑलराइट, ऑन दैट नोट गाइस बढ़ते हैं आगे। बहुत ही प्यारा सा ये गाना विच इज वेटिंग फॉर यू फ्रॉम सोनू के, टीटू की, स्वीटी की शादी। आई लव द नेम ऑफ दैट मूवी। चलिए साथ साथ में सुनते हैं गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड इट्स 9:16।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। बैक टू द मॉर्निंग शो, दिस इज रेणुका विद यू, रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, आपको ये खबर देना चाहती हूँ। भाई पता है क्या, बड़े टाइम से मैं सोचती थी कि यार किसी का लाइसेंस अगर जब्त किया जाता है राइट, तो फिर वो इंसान अगर गाड़ी फिर भी चलाए तो क्या होगा, कैसे किसी को पता लगेगा। बट बात कुछ ऐसी है बॉस, डोंट टेक इट लाइटली। हाई कोर्ट ने सिंगापुर में बेंचमार्क जेल टर्म किया है फॉर दोज हु ड्राइव डिस्पाइट हैविंग लॉस्ट देयर लाइसेंस। जी हाँ, जो भी इंसान अगर गलतियां करता है बिहाइंड द व्हील, तो वेल ऑब्वियसली उसको देखा जाता है, पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं, बड़ा कुछ होता है, कई बार लाइसेंस लिया जाता है। वेल एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, हाल ही में हमारे हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्तों का जेल और 2 साल का ड्राइविंग बैन फॉर दोज ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। और ये जो सेंटेंसिंग बेंचमार्क है, वेल इट इज ऑब्वियसली फॉर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर्स जो कि हाल ही में देखे गए कि भाई 2024 में जैसा कि एक आदमी ड्राइव कर रहा था, इवन दो हिज लाइसेंस हैड बीन रिवोक्ड, और उसके बाद और भी लोग देखे गए, भाई पकड़े गए, तो अब जब पकड़े जाएंगे तो वो सभी के लिए एक बहुत ही अच्छे से सेट होगा एग्जाम्पल। तो वेल हमारे जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन, उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि भाई अलग अलग तरह के अनलाइसेंस ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन अगर आपका एक बार लाइसेंस गायब हो जाए, छीन लिया जाए, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपका ऑफेंस है इफ यू आर सिटिंग बिहाइंड द व्हील। ऑलराइट, ऑब्वियसली यू हैव नॉट बीन फाउंड टू बी गुड टू ड्राइव राइट। तो अब इसके चलते आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये मैसेज कि अगर, पहली बात तो आप गलतियां करो मत कि आपका लाइसेंस लिया जाए, लेकिन अगर आपसे ये हो गया है तो फिर आप अनक्वालिफाइड ड्राइवर की कैटेगरी में आ जाते हैं, एंड डेफिनेटली यू शुड नॉट बी ड्राइविंग। ऑन दैट नोट, रेडियो मस्ती 24/7 पर, I'll take a short break guys and be back with some more news this hour. Good morning once again on the morning show. Happy Vesak day. जी हाँ, belated ही सही, लेकिन छुट्टी तो आज भी enjoy कर ही रहे हो ना।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
1: वेलकम बैक। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो मसी 24/7 पर बनी हुई है रेणुका आपके साथ सुबह 7 बजे से। एंड एज आई हैव बीन सेइंग, ऑल दोस पीपल हैव जॉइन मी राइट इन द बिगिनिंग, थैंक यू मेरी कंपनी रखने के लिए। एंड दोस पीपल जो अपनी लॉन्ग वीकेंड मना रहे हैं, देख लूंगी मैं। तो भाई कुछ आप में से लोग वापस भी आ रहे हैं आज के दिन में। व्हाट इज योर प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? बाय द वे आई एम प्लानिंग कि शो खत्म होते ही सबसे पहले तो मैं थोड़ा वर्कआउट पे जाऊं। लेकिन ये जो लोग बाली लंकावी से वापस आ रहे हैं ना, अपनी सेहतें बना के और ऐशे करके, वेल तुम्हारे साथ अलग से डील करेंगे। चलिए इस टाइम पर बिजनेस न्यूज दिए देते हैं आपको। डेल ने कल ही के दिन में अनवेल किया अपना मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप XPS 13। जैसे ही वो चाहते हैं कि एप्पल के मैकबुक नियो का बिजनेस छीन लिया जाए, बिकॉज दैट गोज टू स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स एंड दिस इज एग्जैक्टली फॉर दैट। 699 जो शुरुआत है इस लॉन्च की, एंड अ रिड्यूस्ड 599 फॉर स्टूडेंट्स जो कि 16 साल और उसके अराउंड है ड्यूरिंग द बैक टू स्कूल सीजन। XPS 13 जो है वो सुपीरियर एक्सपीरियंस ऑफर करता है एज कम्पेयर टू द मैकबुक नियो, ऐसा कहा डेल ने। वेल बड़ा ही अग्रेसिव पुश इनटू द पीसी मार्केट, लोअर प्राइस लैपटॉप दिखाता ये है कि डेल ने एप्पल से मेन फीचर्स बिल्कुल ले लिए हैं और प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री का फायदा उठाया है। वेल व्हाई नॉट, बिकॉज डेल ने कहा है कि XPS 13 विल बी द थिनेस्ट एंड लाइटेस्ट मॉडल, हाफ अ पाउंड लाइटर देन एप्पल्स मैकबुक नियो, जिसमें कि लार्जर डिस्प्ले भी होगा। सो वेल नॉट टू बैड, एप्पल ने डेब्यू किया था अपना मैकबुक नियो लाइनअप 599 में इन मार्च, जिसकी वजह से उनका सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट सॉलिड बड़ा था, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए $500 का है वो। अब देखने की बात यह है कि क्रेडिट के चलते एंड कैश के लेते डेल जीतता है या एप्पल। रेडियो मस्ती 24/7 पर छोटा सा ब्रेक यहां पर, एंड आई बी बैक टू सी माई गुड बायज वेरी सून। कहीं मत जाएगा, चल रहा है द मॉर्निंग शो।

0: सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7।
1: जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, 7 बजे से 7 साथ। जी हाँ, और इस समय 10 बजने ही वाले हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर रेनुका वांट्स टू टेक योर लीव गाइस फ्रॉम अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग। मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है कि आई शुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, लॉन्ग वॉक। इसीलिए आई कांट वेट टू गेट इन टू माई लॉन्ग वीकेंड। जी हाँ, और ऑफकोर्स बाकी लोगों को भी अब कुछ अपना काम करने दो, सारा काम मैं ही करूंगी क्या? All right, on that note, guys, I hope you enjoyed the updates that I brought to you this morning. And of course, from Radio Masti 24/7, it's time for me to say goodbye. Be good, be wonderful. अरे हाँ, और मैं मिलूंगी कल शाम को आपको हमारा वो स्पेशल शो जिसे कहते हैं डियर मस्ती दिल से। Yeah, exactly there. Well, we are getting some amazing feedback on that. So make sure that you guys tune in. If not to share your dil ka hal, then at least हमारे जो बाकी लोग शेयर करते हैं उसका शायद कोई सोल्यूशन आपके पास भी हो, क्योंकि सारे सोल्यूशन सिर्फ हम, हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं सिर्फ वही तो नहीं देंगे ना। आप भी तो जिंदगी जी रहे हैं, आप भी किसी की मदद कर सकते हैं। इट्स टुमारो 5 to 8 PM, इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से। लेकिन फिलहाल के लिए इट इज रेनुका दिल से सेइंग हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द डे, एंजॉय विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, जस्ट रिलैक्स। बस कल से फिर से भागदौड़ शुरू हो जाएगी 4 दिन की, तो आज पूरी पूरी मस्ती में जी लीजिए। ऑलराइट, टेक केयर गाइस, बाय फॉर नाउ।

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
4: द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
7: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
4: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो सिंगापुर, हेलो अ वेरी गुड डे, और जाओ मेरे शेरों, क्योंकि आज वो दिन है जो कि जून का पहला दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंटली राइट, नया महीना नया दिन और साथ में एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग वीकेंड जो है उसका एक मजेदार मंडे मॉर्निंग में लेकर के आई हूँ। मैं हूँ आपके होस्ट सीधा आपके फेवरेट स्टूडियो से। इट्स अ हॉलीडे, आई नो, नो कॉर्पोरेट टेंशन, नो अलार्म का गुस्सा, क्योंकि आज पूरा सिंगापुर सेलिब्रेट कर रहा है वैसाख डे। आपको पता है ये दिन ना लॉर्ड बुद्धा के बर्थ, एनलाइटमेंट और उनके जो परिनिर्वाणा है उसके बाद एक बेहद पावन रिमाइंडर होता है। अगर आप लिटिल इंडिया के पास से गुजर रहे हो ना, आपको पता है वहां पे एक बहुत ही फेमस लॉर्ड बुद्धा का टेंपल है, हजारों लाइट्स और फ्लैग्स, एकदम से दुल्हन की तरह आपको जगमगाता हुआ दिखेगा वहां पे। वो लोग सुबह से ही वहां पे बेदिंग द बुद्धा जो रिचुअल है और जो काइंडनेस फैलाने के लिए जो टेंपल्स पहुंच रहे हैं वहां पे लोग, ये रिचुअल शुरू हो जाता है। तो इस भाग दौड़ वाले सिनेरियो में ये जो दिन है हमें कहता है थोड़ा रुको, पीस का एक नया वाइब ये जो दिन है हमें देता है। सो आप सभी को वैसाख डे की बहुत सारी विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड विद दिस नोट आज का शो शुरू करते हैं। छुट्टी है तो प्लान क्या है पहले ये बताओ, क्योंकि इट हैज बीन अ लॉन्ग वीकेंड और आज मंडे इट्स लाइक अ हॉलीडे अगेन आपके लिए। कल से काम पर लौटोगे, पर अभी क्या प्लान है मुझे बताना जरूर, कहाँ कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hi everybody, welcome back. This is me, Mugdha. आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। नया दिन, नया महीना and so much more to talk about. Welcome back people. आज वैसाख डे है ना, और वैसाख डे के इस बहुत ही ऑस्पिशियस मौके पर चलिए थोड़ा करीब से जानते हैं कि लोग इस दिन को कितने खास तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं, बहुत से लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग मुझे दुनिया के ऐसे कोनों से सुन रहे होंगे जिन्हें पता भी नहीं है कि वैसाख डे नाम का एक सेलिब्रेशन भी होता है कहीं पर। यस, इट इज अ वेरी बिग फेस्टिवल। तो वैसाख डे के ठीक एक दिन पहले क्या होता है ना कि जो ब्राइट हिल रोड है वहां पे कोंगमोंग मोनेस्ट्री है, उसमें एक बहुत ही अद्भुत बुद्धिस्ट सेरेमनी हुई। इनफैक्ट सैफ्रन रोब्स में ना मॉन्क्स जो है उन्होंने डिवोटीज को लीड किया, जहां पे लोगों ने स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन और वो जो पुरानी गलतियां उसका पश्चाताप जो है उसके लिए प्रोस्ट्रेशन देने की, कहते हैं जिसको दंडवत प्रणाम करना कहते हैं ना, वो मुद्रा में उन्होंने प्रेयर की। और एक 56 ईयर ओल्ड डिवोटी ने बताया कि इस रिचुअल के बाद ना उनका दिल एकदम से साफ महसूस होता है, उनको बहुत प्योरिटी फील हुई उनको, और असली धर्म जॉय जो होता है ना वो सुख उनको मिला। यू नो व्हाट, इस मोनास्ट्री में एक बेहद फेमस सालों पुराना ट्रेडिशन है जिसको कहते हैं 3 steps 1 bow। समझे आप, मतलब डिवोटीज हर 3 कदम चलते हैं, उसके बाद झुक के प्रणाम करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली टायरिंग, बहुत टायरिंग होता है, पर लोग अपने परसिवियरेंस और पक्के विश्वास से इसे पूरा करते हैं, दे कंप्लीट दिस रिचुअल।

अगर आपने कभी ऐसा कुछ देखा है तो क्या महसूस किया है, कभी लगा कि आपको करना है, और अगर किया तो क्या महसूस किया, मुझे बताइएगा जरूर। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, आई विल राइट बैक, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: क्या? सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey everybody, welcome back. मैं हूँ मुग्धा आपके साथ, और लॉन्ग वीकेंड की खुशियों के बीच में अब आने वाले हैं आने वाले महीनों को लेकर एक्चुअली एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत बड़ा अपडेट, राइट, जिसे ना आपको एक्चुअली बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। MET सर्विस ने वॉर्न किया है कि इस साल जून से लेकर के अक्टूबर तक सिंगापुर में हेज यानी कि धुंध और पोल्यूशन प्रदूषण इसका रिस्क ना बढ़ने वाला है। असल में क्लाइमेट पैटर्न्स जैसे कि एल नीनो और इंडियन ओशन डिपोल की वजह से जो ड्राई वेदर है उसके आने की पूरी पूरी पूरी संभावना है। इस ड्राई स्पेल की वजह से क्या होगा ना, हमारे जो आसपास के रीजन्स हैं उसमें फॉरेस्ट फायर्स बढ़ सकती हैं, और इसका क्या होगा, सीधा असर सिंगापुर की हवा पर पड़ेगा, एंड इट विल बी एक्चुअली क्रिएटिंग सम हेज एंड धुंध एंड प्रदूषण एंड ऑल दैट। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब अल नीनो और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं तो ये पता है क्या होता है, डबल ट्रबल होता है। इससे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ना नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्मी होती है और सूखा पड़ता है, जो कि हेज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। तो दोस्तों अभी से अपने ये जो मास्क है ना उनको स्टॉकअप कर लीजिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। हेज से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, आई विल बी अपडेटिंग यू एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू। फिलहाल तो ये जानना जरूरी था कि ऐसा हो सकता है। I'll be right back with some more important informations और आपके लिए कुछ celebrative लेकर के। Stay tuned and stay connected.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha. Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live.
8: Hi everybody, welcome back Singapore. वैसा डे की छुट्टी है तो क्यों ना इस त्योहार को और थोड़ा स्पेशल मनाएं, थोड़ा सा ग्रैंड बना दिया जाए। देखो, हम सिंगापुर के लिए, सिंगापुरियंस के लिए एक्चुअली, दोस्ती, फैमिली, परिवार, फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़ के है ना। और उसके बाद क्या है सबसे स्पेशल? असली देसी खाना। इट्स लाइक एक जज्बात इमोशन, और इसी फीलिंग को पूरे 25 सालों से हमारी थालियों में और दिलों में कौन परोस रहा और बसा रहा है? एक बेहद खास जगह है जी, राफल सिटी का हमारा अपना आइकॉनिक शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, और ये सेलिब्रेट कर रहा है अपनी सिल्वर जुबली, और हम सबके साथ मना रहा है, अकेले अकेले कोपचे में नहीं। A quarter century of royal hospitality right here in the heart of our city. सालों से ना हमारी हर बर्थडे पार्टी, हर एनिवर्सरी, हर ओकेजन, हर त्योहार, दिवाली, होली, फैमिली गैदरिंग्स, ये जो एक रेस्टोरेंट है वो उसका गवाह रहा है, क्योंकि ये हमारे साथ सेलिब्रेट करता है। और इसी माइलस्टोन को ना एक बड़े फेस्टिवल की तरह मनाने के लिए शाही महारानी आपके लिए एक ऐसे सेलिब्रेटरी ऑफर के साथ आ रहा है जिसको सुन के आपका तो दिल झूमेगा और होश उड़ेंगे। उनके जो सबसे बेहतरीन और बिलवड सिग्नेचर क्लासिक्स हैं, जैसे कि रसीला तंदूरी चिकन, क्रीमी चिकन मक्खन वाला रिच पालक पनीर, और शाहीज फिश अमृतसरी करी, जो कि आमतौर पे $32+ या उससे ज्यादा के होते हैं, ये सब आपको मिलेगा एकदम स्पेशल प्राइस पे, सिर्फ $25+। कैन यू बिलीव इट? बस आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मिल करके पर टेबल मिनिमम $100 स्पेंड करने हैं, एंड यू कैन जस्ट अवेल द शाही महारानी दौलत, अनलॉक कर सकते हो यार। अब ये लिमिटेड ऑफर जो है अभी भी आपके पास मौका है, इट्स लाइक 30th June तक ये वैलिड है। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड है ना, आज एक काम करो, जरा बाहर जाओ, पुरानी यादों को ताजा करो, कॉल करो 6235-8840 पर और अपना टेबल झटपट बुक करो। चलो इसी रॉयल सेलिब्रेशन के मूड में सुनते हैं ये था कास्ट बॉलीवुड नंबर। मुलाकात करेंगे शो के सेकंड आवर में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी होस्ट जस्ट अ सेकंड। हाँ, रुकना, कहीं जाना नहीं, मैं अपना माइक थोड़ा सेट कर रही थी। इट्स डन, ना कुछ चीजों को ठीक किया जाए, कोशिश करें तो ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि चीजें ठीक नहीं हो सकती, पर कोई ठीक करना ही ना चाहे तो। वेल, दिस इज मी सिंगापुर के स्टूडियो से सीधा लाइव आपके रेडियो सेट्स तक। कल तक जो सुपरस्टार्स एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज उनके बीच ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसको तोड़ना ऐसा लग रहा है लेकिन नामुमकिन हो गया है। अब अगर मैं इस माइक को ठीक ना करना चाहूं और टेढ़ा ही रहने दूं तो कैसे बात बनेगी? करना तो पड़ेगा ना किसी ना किसी को। अभी कुछ वक्त पहले की बात है कि फाइस FWICE ने रणवीर सिंह पर नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जो है वो लगा दिया, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कहा जा रहा है कि रणवीर जो है इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं और फरहान अख्तर और जोया अख्तर के आगे वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, बढ़ाया उन्होंने, पर उनका ये पीस ऑफर साफ रिजेक्ट हो गया। क्या कह रहे हो? अब सोचो ऐसा क्या हो गया है फरहान और जोया जैसे कूल फिल्म मेकर्स को कि वो इतने गुस्से में है। ये बॉलीवुड में आखिर चल क्या रहा है? अब हम इसको अगर किसी अलग एंगल से सोचें कि पहली बार तो नहीं है जब किसी एक्टर ने अचानक से कोई प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया हो, पर इस बार बात सिर्फ डेट्स या क्रिएटिव डिफरेंसेस की लग तो नहीं रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इंडस्ट्री के अगर हम इनसाइड कॉरिडोर्स की बात करें तो चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या बड़ी बात है जिससे पर्दे के पीछे इतना ज्यादा छुपाया जा रहा है। क्या बात, इट्स जस्ट अबाउट 45 करोड़, इट्स मेयर 45 करोड़, नुकसान नहीं है ये उनके लिए, या फिर सुपरस्टार्स का कोई अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है जो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स अब कहते हैं कि नहीं हमको तो इसको तोड़ना ही है, नहीं हो सकता ये, या फिर ये कोई लॉबिंग है जो चल रही है फॉर सम एंड फॉर नॉट सम। इसके पहले भी कुछ एक्टर्स ने बीच में फिल्में छोड़ी हैं, हटाया गया है, खुद चले गए हैं, जैसे कि अभिषेक ने जेपी दत्ता की फिल्म छोड़ी थी, ऐश्वर्या ने भी एक फिल्म से वॉकआउट किया था, तब तो किसी ने कोई बैन नहीं लगाया था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे कई जगह पढ़ने में आ रहा है आर्टिकल्स में। वाई रणवीर, वाई? वैसे नॉन कॉपरेशन सबसे बड़ा हथियार माना जाता है बॉलीवुड में, इनफैक्ट बॉलीवुड के इतिहास में। अगर ही किसी पर लगता है तो स्पॉट बॉय से लेकर के बड़े से बड़े टेक्नीशियंस तक कोई भी उनके किसी प्रोजेक्ट पर साइन नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी सुपरस्टार के करियर को ठप करना हो तो उसके लिए ये काफी है। इज इट बिकॉज ऑफ धुरंधर, अ लॉबिंग, समथिंग लाइक दैट? क्योंकि कुछ तो महक रहा है बॉलीवुड के गलियारों में, और अब अगर रणवीर के हाथ बढ़ाने के बावजूद इन दोनों ने अपने आप को पीछे खींच लिया है तो इसका मतलब कुछ तो है। दिस इज नॉट एन अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, अदरवाइज रणवीर के साथ कोई काम नहीं करना, प्लीज।

cut the crap. मुझे तो कोई और ही बात लग रही है जो कि ये बताना चाहते नहीं, और मुझे तो लग रहा है कुछ सॉलिड गड़बड़ है। आपको क्या लगता है? कुछ साजिश?

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Yo, boys, I am singing song. Soup song. Flop song.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Sanjana! Sanjana!
3: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
4: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मुग्धा को एंड दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जरा चलते हैं बॉलीवुड की एक मेगा एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। अक्सर मैं यहाँ पे मूवीज के पोस्टपोन होने की बात लेकर के आती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब जब बात करते हैं तो बात करेंगे कुछ और। अल्फा पता है ना आपको, द फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स यशराज की फिल्म, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इसको लेके। सुना है कि आलिया भट्ट और शर्वरी की जो फिल्म है ना, इसके रिलीज को पता नहीं क्यों अचानक से प्रीपोन कर दिया गया है, ये पहले आ रही है। ये फिल्म अब धांसू एक्शन के साथ आपके नियरेस्ट सिनेमा हॉल्स में पहुंचेगी ऑन 3rd of July। यस, सिनेमा घरों में बूम धमाका करने। फैंस स्क्रीन पर आलिया और शर्वरी को एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ खबरें आ ही चुकी हैं। और चूंकि मेरे दिमाग की बत्ती हमेशा जल जाती है ऐसी बातें करते वक्त, तो क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में अक्सर अगर कोई भी फिल्म प्रीपोन की जाती है, यू नो प्रीपोन, ये तभी होती है, होता है जब मेकर्स को अपने प्रोडक्ट पे 100% कॉन्फिडेंस हो, ताकि उन्हें बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा अनइंटरप्टेड रन मिले, तभी कोई फिल्म प्रीपोन होती है। अदरवाइज प्रीपोन का और कोई कारण नहीं होता, पोस्टपोन तो खैर मेनी रीजंस की वजह से हो जाती है। वैसे कॉन्फिडेंस से मुझे याद आया, अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा लगता है कि आप सबको हिला डालोगे, एकदम बैंड बजा दोगे और अपनी वॉइस से दुनिया बदलना चाहते हैं, खुद की भी और बाकियों की भी, तो दिस इज फॉर यू। इट्स अ मेगा अपॉर्चुनिटी। मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आया है द आरजे एकेडमी का एडमिशन, जो कि ओपन हो चुके हैं। योर वॉइस योर स्टेज, हम तो है ही यहाँ पे, फ्यूचर आपके हाथ में है। बहुत ही अद्भुत हाइब्रिड मॉडल प्रोग्राम है, जिसमें आपको ऑनलाइन और इन स्टूडियो दोनों का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको पता है 14 साल और उससे बड़े किसी भी पैशनेट लिस्नर के लिए फुल 12 आवर की ट्रेनिंग है जो आपको दी जाएगी। बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का है ये पूरा प्रोसेस। और सबसे बड़ा बम्पर ऑफर पता है आपको क्या है, सिलेक्टेड ट्रेनीज को मौका मिलेगा सीधा रेडियो मसी 24/7 लाइव से लाइव शो होस्ट करने का। तो अगर आपके पास वो एक अल्फा एटीट्यूड है ना, और आप माइक से प्यार करते हैं, माइक बेस्ट फ्रेंड बन सकता है आपका, बनाना चाहते हैं, तो देर मत करो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ईमेल करो हमारे पास info@radiomasti.com.sg पर, एंड एप्लीकेशन फॉर्म मांग लीजिए हमसे। ये एक धांसू मौका है आपके पास, आपका छोटा सा इंट्रो ईमेल करो info@radiomasti.com.sg पर। लेट्स सी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है या नहीं।

0: सो इस हाई एनर्जी अपॉर्चुनिटी और अल्फा वाइब के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आप सुन रहे हैं मुग्धा को. स्टे कनेक्टेड.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

0: आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Well, मैं हूँ आपके होस्ट सीधा, आपकी दोस्त बन चुकी मुग्धा आपके रेडियो सेट्स पर सिंगापुर स्टूडियो से लाइव। हॉलीवुड से ना एक बहुत ही दिलचस्प और एक अगर मैं कहूँ कि ऐसी खबर आ रही है जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। सबसे बड़े मुद्दे पर इनफैक्ट देखा जाए खबर तो आजकल की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें तो पता है हॉलीवुड में अभी कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। सो इन सब के बीच में हॉलीवुड के एक बहुत फेमस स्टार हैं, सब जानते हैं उनको, एमिली ब्लंट। या यू नो एमिली ब्लंट की आने वाली फिल्म है स्टीवन स्पीलबर्ग की डिस्क्लोजर डे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन के लिए ना एआई का इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया। नो। उन्होंने रिवील किया कि मेकर्स उस सीन के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे, पर एमिली सेड नो वेज, मैं खुद परफॉर्म करूंगी, मैं हूं तो एआई की क्या आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है। सी, उनका मानना है कि जो ह्यूमन इमोशन और डर एक एक्टर खुद ला सकता है ना, कोई एआई, कोई मशीन, कोई सीजीआई नहीं ला सकती। देखो ये तो है, आप चाहे कितना भी बारीकी से इमोशंस को कॉपी कर लो, लेकिन कॉपी ही रहेगा, रियलिटी नहीं है। यू नो व्हाट, हॉलीवुड में अब एक्टर्स ना अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटी एआई क्लॉजेस लगवा रहे हैं, यस, ताकि उनकी आवाज, उनका चेहरा, उनके इमोशंस बिना उनकी मर्जी के कोई एआई टूल रेप्लिकेट ना कर सके। कुदरत के एहसास की बात हो या हम कह लें कि एक्टिंग, असली तो असली होता है यार, नकली हीरा असली की जगह नहीं ले सकता। गोल्ड प्लेट गोल्ड नहीं हो सकता, इमोशंस की जगह एआई इमोशन नहीं।

0: क्या AI सच में एक्टर्स को रिप्लेस करेगा? इसका जवाब आपको खुद एक्टर्स ही दे रहे हैं. No ways. हम करने ही नहीं देंगे, है ना? Stay tuned.
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। देखिए क्या है, जैसे कि एमिली ब्लंट को बहुत ही ऑथेंटिक चीजें पसंद है, हर चीज में रियलिस्टिक और ऑथेंटिकेशन की बात की हमने अभी कुछ वक्त पहले, और रियल चीजों से मुझे याद आया कि मैं इस बात के बिना ये आर नहीं खत्म कर सकती। सो इट्स ऑल अबाउट असली सोना, सोना कितना सोना है, और सिर्फ सोना नहीं, सोना चांदी हीरा मोती सब। देखो आने वाले दिनों में शादियों का सीजन है, फेस्टिवल वाइब्स हैं ही, और देखो कोई भी छोटा बड़ा सेलिब्रेशन हो विदाउट ज्वेलरी शॉपिंग तो ये पूरा होता नहीं। गहनों से ही तो श्रृंगार में चार चांद लगता है, चाहे वो देने हो चाहे पहनने हो। ओकेजंस एंड फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं गहनों से पूरे होते हैं, लेकिन आज के सिनारियों में गोल्ड डायमंड इनके तो जो रेट्स हैं वो तो भाई साहब जुब करके आसमान छू रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा भारी लगता है ना। लेकिन तभी तो फिकर नॉट, जोया लुकास वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर आपके आने वाले हर जश्न को ग्रैंड बनाने के लिए ही तो ये ऑफर लाए हैं, एंड द ऑफर इज द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। आपको मिल रहा है एकदम इनक्रेडिबल फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड डायमंड पोलकी एंड ऑल द प्रेशियस ज्वेलरीज, पता है आपको, एंड जस्ट यू कैन नॉट बिलीव इट यार, 40% ऐसे मौके पे 40% ऑफ। अब इसके साथ ही आपको पता है क्या है, 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज रेट्स भी हैं उनके पास। दिस इज सो कन्वीनियंट, और इजी पेमेंट प्लान्स हैं आपके लिए उनके पास, कोई आपको झकझक नहीं करनी है, और ये सब इसलिए ताकि आप बिना किसी बजट स्ट्रेस के खुल के शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग तो यार ऐसे इवेंट्स और ओकेजंस लाइफ में एक ही बार तो आते हैं। सो दिस धांसू ऑफर इज वैलिड टिल 14th of June 2026। देर मत करो, परिवार को साथ लो, अकेले जाओ जैसे मन करे वैसे। वेडिंग सीजन है, कोई सेलिब्रेशन है, खुद के लिए कुछ खरीदना है, एवे मन कर रहा है, खुद को हैप्पी फील कराना है, शुरू करिए तैयारी आज से और खरीदिए जा करके। इस ऑफर की पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप इनके स्टोर पे जाइए, बाकी मैंने पूरी दे दी है जानकारी, इससे ज्यादा कोई जानकारी है नहीं। गोल्ड पसंद है डायमंड, जो भी मन करे जाके ले लो।
2: It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi everyone, this is me Mugdha और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। आपको पता है शो का ये थर्ड एंड द लास्ट आवर सबसे एक्साइटिंग क्यों होता है? बिकॉज़ यहाँ पे ऐसी ऐसी खबरें मुझे मिलती है जो कि मैं सोचती हूँ कि यार कमाल के लोग हैं, कमाल की बातें हैं, कमाल की चीजें, कमाल है यार ये सच में। वेलकम बैक। आपको पता है इस वक्त यूके का हालचाल क्या है? वहां पे इस वक्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी से लोग जूझ रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त दुनिया के हर कोने में जहां भी गर्मी पड़ रही है कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्ड ही तोड़ रही है। वहां के एक बंदे ने ना सोशल मीडिया पर अपने नए एसी की फोटो शेयर की है। अब आप कहेंगे एसी की फोटो शेयर करने की क्या जरूरत यूके यूएसए वालों को हा? लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वहां के लोगों ने इसको अल्टीमेट स्टेटस सिंबल कहा है। भैया लोग कह रहे हैं भाई तुम्हें तो मतलब यूके का राजा बना देना चाहिए। क्यों? आप तो ये सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, इंडिया सिंगापुर जाओ हर घर में एसी लगा हुआ है। मतलब इंडिया में तो हर घर की छत पे आपको चार चार एसी दिख जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? सभी राजा है वहां पे, हर घर हर ऑफिस हर कमरे में एसी लगा होता है। फॉरेन कंट्रीज में एसी लगाना इतनी बड़ी बात क्यों है? मैं भी कई बार सोचती थी। इसके पीछे का सच पता है क्या है? मैं बताती हूँ। असल में यूके और यूरोप के ज्यादातर देशों में ना मौसम साल भर ठंडा रहता है, इसीलिए वहां के 95% से ज्यादा घरों में एसी होता ही नहीं है। वहां के घर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि गर्मी को अंदर ट्रैप करें ताकि ठंड में उनको राहत मिले। लेकिन अब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से अब जब वहां गर्मी पड़ रही है तो उनके घर तंदूर की तरह तपने लग जाते हैं। तो वहां पे एसी लगवाने का खर्चा, परमिशन, वो इतना मुश्किल है कि अगर किसी ने अपने घर में एसी इंस्टॉल किया है तो आप ये मान लीजिए कि इंडिया वालों

वहाँ पे वो अंबानी है, अमीर है, रिच है, राजा है। सच में यार, इंडिया वालों सुन के मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हम तो बड़े खुशनसीब हैं। इनफैक्ट मैं खुद मानती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। बटन दबाते ठंडक मिल जाती है हमको। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज वाचिंग एमिली इन पेरिस, वहां पे भी तो एसी नहीं होते घरों में। नाउ आई नो व्हाई। और मैं सोचती रह गई, पंखे लेके हिला रहे हैं ये, लेकिन एसी क्यों ना लगा रहे। गर्मी में तप रहे, पसीने बह रहे, लाल हुए जा रहे तंदूर की तरह, लेकिन एसी ना लगा रहे। क्यों ना लगा रहे।

0: ही आ गया था, आपको आया समझ में? चलिए मैं आपको एसी से गर्मी से राहत पाने का एक बहुत अमेजिंग तरीका बताऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। Only on मस्ती Hangout with RJ मुग्धा, Radio मस्ती 24/7 Live.
1: Hi, welcome back. Singapore के स्टूडियो से सीधा आपके कानों तक मैं हूँ मुग्धा। You remember UK के रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी की बात की थी, इसी गर्मी को दूर भगाने का एक तरीका मैंने आपसे कहा था शेयर करूंगी। Yes. फलों का राजा आम, आम खाइए गर्मी दूर भगाइए। देखिए जून शुरू हो चुका है और इस मौसम में अगर आपने अभी तक रसीले आम नहीं खाए हैं, क्या जी रहे हो यार, आम खाओ। Do you know, आम खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आम ना सिर्फ टेस्ट में अच्छा नहीं होता है, लाजवाब होता है, खैर वो तो बात अलग है। ये एक सुपर फूड है, इसमें आपको पता है भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। तो जो बहुत ज्यादा हीट वेव है बाहर, प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसमें आपकी जो इम्यूनिटी है ना उसको ये बूम बूस्ट करता है। साथ में आम में ना बहुत स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइट्री फाइबर्स होते हैं, और अगर आपकी गट हेल्थ और डाइजेशन को एकदम आपको फिट रखना है तो आप आम खाओ। इसका टेस्ट अमेजिंग होता है और हेल्थ का सॉलिड डोज है आम। अब अगर आप सिंगापुर में बैठे बैठे आम खाना चाहते हो ना, असली वाला अल्फांजो, तो ggmart.com लेकर के आया आपके लिए मैंगो का असली स्वाद, मैंगो के स्पेशल सीजन में। यू नो, देवगढ़ के अल्फांजोज हो या फिर हो रत्नागिरी के अल्फांजोज, आप इनके वेबसाइट पे जाइए, सब मिलेगा आपको। सबसे अमेजिंग बात है कि अगर आप 70 सिंगापुर डॉलर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डिलीवरी इज गोना बी एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। आप उनके फिजिकल आउटलेट पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी वेबसाइट पे और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप स्टूडियो नंबर पे भेजते हैं तो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव ऑफर्स। साथ में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ना और चेकआउट करते वक्त एक कोड new10 लगा रहे हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो बाहर क्यों जाना, घर पे बैठो और आप मंगाओ, खाओ, शॉपिंग करो, मजे लो। दिस इज ggmartonline.com। समझे?

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक, दिस इज मी योर होस्ट, सिंगापुर के स्टूडियो से सीधा आपके कानों तक। हमेशा हम सोशल मीडिया पे ना देखते हैं कि माँ ने अपने बच्चों के लिए किया, मम्मी ने वो बनाया, ये सरप्राइज, वो इमोशंस, फलाना दिमाग, मम्मियों के इमोशंस खुल के दिखाए जाते हैं, पर अक्सर ना फादर्स को भूल जाते हैं। हमको लगता है वो कुछ करते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, याद रखिए, पापा का प्यार ऊपर से बहुत सख्त होता है, नारायण शंकर की तरह है, पर अंदर से बेहद सॉफ्ट। एक बहुत ही दिल छू लेने वाला वीडियो जो है ना, वो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जहाँ पे एक पिता ने अपने बेटे के लिए उसके घर लौटने पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, स्वीट, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज प्लान किया। उनके चेहरे की जो वो खुशी थी ना और आंखों में जो आंसू थे, उसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। अब आप जानना जरूर चाहेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, जो ये वीडियो इतना धूम मचा रहा है, सबका दिल जीत रहा है। उनका बेटा बहुत समय के बाद ना घर लौट रहा था, तो उन्होंने किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट के बजाय अपने हाथों से एक बड़ा सा ब्यूटीफुल सा वेलकम बोर्ड बनाया, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बोर्ड, रुको, जब बेटा घर के अंदर आया तो पापा ने पूरे बच्चे की तरह पूरे एक्साइटमेंट में से ढोल बजा के, जस्ट लाइक अ किड, उसका स्वागत किया। उन दोनों का वो टाइट हग देख करके ना इंटरनेट पे सबका दम निकल गया। सही बता रही हूँ, पापा ऊपर से सख्त होते हैं पर अंदर से एकदम छोटा बच्चा। डू यू नो कि फादर्स अपने इमोशंस को सबसे कम एक्सप्रेस करते हैं, पर उनका जो केयर करने का तरीका होता है ना, अक्सर एक्ट ऑफ सर्विस से दिखता है। जैसे कि खुशी के लिए खुद ही ढोल बजाने लगना, दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक ऑफ फादर्स एंड मेल मेंबर्स। आपके पापा ने भी आपके लिए, आई एम प्रीटी श्योर, कभी ना कभी कुछ ऐसा किया होगा, या आप कुछ ऐसा करिए कि वो ऐसा कुछ करें, है ना। मतलब फादर्स आर बिल्कुल बराबर में केपेबल टू क्रिएट सरप्राइजेस, टू गिव सरप्राइजेस, टू शो द इमोशंस। बस उनको मौके कम मिलते हैं और एक्सपोजर भी कम मिलता है, पर अब इमोशंस खुल के बाहर आ रहे हैं। एंड दिस वीडियो जस्ट

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन डॉट कॉम, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल, इस प्यारे से इमोशनल स्माइल के साथ घड़ी की सुइयां घूम चुकी हैं और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। वाओ, अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, वैसाख डे। शुरुआत हमने इसी से की एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, और उसके बाद हमने बहुत सी बातें करी आज के शो में अबाउट बॉलीवुड एंड पीपल एंड सिंगापुर एंड व्हाट नॉट। बॉलीवुड के स्पाइसी कोल्ड वॉर से लेकर के अमेजिंग ऑफर्स तक सब कुछ है ना। जस्ट ट्राई टू कीप योर स्माइल इंटैक्ट आपके फेस पे। मुझे लगता है मेरा ये मकसद जो है वो पूरा हुआ। तो मैं अगर कहूँ कि मेरा शो खत्म करेगा मन नहीं, तो या यू नो आई एम नॉट आई वोंट बी लाइक ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब शो शुरू हुआ है तो खत्म तो करना ही है, तो शो खत्म करूंगी लेकिन इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी। आप मिलना चाहें तो वापस आ सकते हैं जब आपका मन करे। मैं तो हफ्ते में 3 दिन आऊंगी, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले शो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्ती हैंग आउट पर जुड़े रहिए मेरे साथ जब भी मैं आऊं। अदरवाइज आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रह सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, हमारे स्टूडियो के नंबर्स के थ्रू, व्हेनेवर यू वांट टू। सीधा स्टूडियो से लाइव टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। मिलेंगे अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. Check it out.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7. They are fresh. They are.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009। जोश में रहो।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
0: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning.
9: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: and soul.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
5: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
6: तुमको लेकर
5: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
6: मुझे चांद पे ले चलो।
5: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: जिसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
6: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
7: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
8: टाइम टू रेज द बार।
9: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
7: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
4: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Musty Music Cafe.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: नहीं, डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: हाँ जी हाँ जी, क्या हाल चाल? ये जो ग्लो आ रखा है चेहरे पे, क्या नाइस नाइस, आई लाइक इट। भाई छुट्टी वाला ग्लो जो है ना, वो अलग ही दिखता है। लाइक दूर से आप वहां बैठ के ग्लो कर रहे हो, मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है फुल ऑन। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, गुड इवनिंग। 5:05 और इस वक्त जिस आवाज को आना होता है वो आवाज यहाँ पर आ पहुंची है। मैं मात्र आपके साथ, एंड यस, हमारा तो मंडे ही है, हमारा कोई छुट्टी वाला कैसे, जैसा कि आपको पता ही है, पिछले हफ्ते जो आपने मिड वीक में मस्ती की थी, हम तब भी काम कर रहे थे। आज जब आप एकदम सौंधी सौंधी, वो जो एकदम फीलिंग वाली लेकर चल रहे होते ना छुट्टी वाले दिन, अब आपको आएगी कल मंडे वाली फीलिंग। यूजुअली ट्यूजडे को एकदम कजन वाली फीलिंग आती है कि चलो मंडे तो निकल गया, ट्यूजडे थोड़ा सा बेहतर गया। ना ना ना ना, बट दिस इज वेयर I come very very handy. Why? Because हम शुरू कर चुके हैं यहाँ पे मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, एकदम मीठा मीठा आपको याद दिलाते रहेंगे। मंडे वाली शाम है, इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट वाला शो कर रहे हैं, और आपका मूड अच्छा करने के लिए आपके ही पसंद के और रिक्वेस्ट किए हुए गाने यहाँ पर प्ले किए जाएंगे। So are we ready? Of course we are always ready. तो भाई आप सोचना शुरू करो, मैं गाने प्ले करना शुरू करती हूँ, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा कारवा हमारा यूं ही एकदम निखर के बाहर आएगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी कहानियां, सब कुछ होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा आपका डेट का जो टाइम है यार, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली वंडरफुल, वाह वाह। इसी बात के बाद तो भाई जो है एकदम अच्छा अच्छा से दो गाने, और उसके बाद हम होते हैं हाजिर और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आप बताएं कि क्या क्या है आज के दिन में आपने छुट्टी में, बताओ बताओ 9151896 पर।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
5: क्या
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
5: वाजी, क्या बात जी?
6: Order today from GG Mart, your personal grocer.
7: Warning. गाना बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. You say, we play.
5: That's right. It's your choice वाले गाने प्ले करने वाला दिन. And जब तक आप नहीं बताते तब तक मेरी चॉइस पर चलने वाला दिन. रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ. 5:00 हो चुके हैं यहाँ पे 18 मिनट. जी हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि बॉबी देओल की बात करते हैं तो क्या है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड द सोशल मीडिया, लोग तो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं और बिना सोचे समझे ना बिल्कुल बोलते हुए जाते हैं बिना लगाम के. सो कुछ हुआ ऐसा कि अल्फा मूवी इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हीरो मूवी बट विद द गर्ल्स. ओके, आलिया भट्ट और शर्वरी ऑलरेडी रोप्ड इन है इस मूवी के लिए. एंड कुछ तो ऐसी उड़ती खबर है, ये सारी खबरें उड़ते हुए आती है, ठीक है, कि अल्फा के सेट पे बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच में जो है हुआ आमना सामना. एंड यू नो कुछ अब उन दोनों के बीच में काफी तूतू मैमे हो गई, बहस हो गई. एंड इट जस्ट वेंट आउट ऑफ हैंड एंड देन वन ऑफ देम लेफ्ट द सेट एंड मे बी दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू डू द मूवी एनी मोर. ये सारी बातें चली रही थी तभी बॉबी देओल जो है ना वो बीच में आए और कहे एक मिनट, क्या मैंने ऐसा कहा, क्या आलिया भट्ट ने ऐसा कहा? तो फिर ये कौन है जो जबरदस्ती का अपने आप सीन क्रिएट करके मूवी इन्होंने चालू कर दी? सो वेल यस, बॉबी देओल जो है बिल्कुल आए और उन्होंने अब बिल्कुल ऐलान कर दिया है अबाउट द फेक रिपोर्ट्स ऑफ हिम हैविंग इश्यूज विद आलिया भट्ट ऑन द सेट ऑफ अल्फा. एंड उन्होंने यही कहा कि यार लोग इंटरनेट पे इतने विल्ले हैं. बॉबी पाजी, अब जाके आपको पता चला, दिस इज वेरी वेरी ट्रू. यही है रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम्स कि यस, लोग इतने ही विल्ले हैं कि कुछ भी बात बनाते हैं और फैला देते हैं, फिर आप डील करते फिरो अगर तो करना चाहो. बट बेस्ट है, इन सबको इतनी हूली नहीं देनी है ना, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है. रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर भाई यहाँ पे जो है हर्षदीप कौर जी आना चाहती हैं और बढ़िया सा एक गाना हमें सुनाना चाहती है. हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेट्स गो. 9158963 पर रिक्वेस्ट के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं. इफ यू विश टू लिसन टू अ सॉन्ग ऑफ योर चॉइस जस्ट लेट मी नो, है ना, मैं यहीं पे आपके लिए हूँ.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आई नो राइट, आधा साल निकल गया। यस, फर्स्ट जून है और ऊपर से मंडे है, हमारी छुट्टी नहीं है। बट यस, एंजॉय योर हॉलिडे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 5:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। सीधा चलते हैं सिंगापुर की सड़कों पर। गुड इवनिंग दिस अतवारो। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा हाल अनजान है कि व्हीकल ब्रेक डाउन आपको मिलेगा ऑन बी के ई टूवर्ड्स वुडलैंड्स आफ्टर डेयरी फार्म रोड। रोड वर्क जो है वो चल रहे हैं ऑन सी टी ई टूवर्ड्स ए वाई ई एट ए एम के एवन्यू 1 एग्जिट और मिलेगा ए एम व्हीकल ब्रेक डाउन एम सी ई टाउन में टूवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं AYE before Central Boulevard. So well, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। Coming up next is Bombay Vikings and the mood को थोड़ा अच्छा और करते हैं। बताइए, ये है मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस 9151896 3 पर अंतरा कर रही है इंतजार इस बात का कि आप बताओगे क्या गाना सुनने का मूड है आज। हाँ जी, दविंदर पाजी, आपका भी गाना आने वाला है, कहीं मत जाइए।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: ये आवाज जो होती है कितनी खूबसूरत सी चीज होती है ना। इंसान शायद चला जाता है लेकिन आवाज आपके साथ जो है कई कई सदियों तक बिल्कुल इसी तरह से जिंदा रहती है। एंड दैट्स ब्यूटी ऑफ अ वॉइस एंड नो वंडर आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट वॉइसेस। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ। यहां पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। वेल हमारे दविंदर पाजी जो है ही ऑलवेज रेट्रो गाना वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और मुझे हमेशा टाइम के साथ देते हैं कि भाई अंतरा इस टाइम पे जो है बिल्कुल प्ले कर देना। बट ही ऑल्सो मैं इनसे भी काफी कुछ सीखती हूँ। जिस तरह से समर जी मैं कहते हर इंसान से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वेल भाई हमारे दविंदर पाजी ने कहा कि सुमन कल्याणपुर जी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट एक गाना जो है मैं चाहता हूँ उनकी याद में बिल्कुल यहाँ पे चलाया जाए। जिनको नहीं पता सुमन कल्याणपुर जी जो है उन्होंने काफी सारे मतलब जैसे गाने जो आपको एकदम तुरंत से पहचान में आ जाएंगे नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे द फेमस अंताक्षरी वाला गाना देन तुमने पुकारा और हम चले आए। सो यस ये कुछ 1960s और 1970s की बात है जो अपनी मेलोडियस वॉइस को लेकर शी कार्व्ड अ नीश फॉर हरसेल्फ अलोंग साइड द एरा जिस वक्त प्लेबैक सिंगर हमारी लता दीदी बिल्कुल इतना मतलब नो एवरीबॉडी वाज आस्किंग फॉर हर कि हर गाना उन्हीं की आवाज में है। सो शी रिकॉर्डेड इन सेवरल अदर लैंग्वेजेस एज वेल हिंदी मराठी असमीज कन्नड़ बंगाली ओडिया गजल्स और ठुमरीज काफी कुछ इनका बहुत ही कमाल का करियर स्पैन रहा है। ऑल्दो कई सारे लोग ऐसा कहते थे कि इनकी सुमन जी की आवाज जो है वो लता जी की आवाज के साथ काफी सिमिलर सी होती है बट शी हैज ऑलवेज डिसमिस्ड द कंपैरिजन। सो या शी सेड दैट एवरीवन लव्ड हर सॉन्ग्स एंड शी विल रिमेन इमॉर्टल। उनके साथ मैंने ड्यूएट गाया हुआ है फ्रॉम द फिल्म चांद एंड एवरी टाइम आई मेट हर इट फेल्ट लाइक मीटिंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड। सो वेल इसीलिए अब जो है अगला गाना जो शायद आपने उतना नहीं सुना होगा बट वो हमारे दविंदर पाजी की स्पेशलिटी है। वो हमेशा एकदम चुन के एक गाना लाते हैं। गाने का नाम है रात सुहानी जाग रही है। दविंदर पाजी आज की आपकी रिक्वेस्ट एंड ट्रिब्यूट टू सुमन जी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड इवनिंग मे हर सोल रेस्ट इन पीस।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: मैं कहती हूँ छुट्टी होता ऐसे कि लोगों को रियलाइज ही ना हो रहा हो कि आज दिन कौन सा है। अभी अभी कोई ट्यून इन हुआ है एंड यू नो हु यू आर, मैं नाम नहीं लेने वाली ठीक है, और मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैंने अभी ट्यून इन करके सोचा कि संडे शाम को अंतरा थोड़ी ना आती है, मतलब उसकी आवाज क्यों आ रही है क्या आज कोई खास दिन है क्या? वो खास दिन है मंडे, क्योंकि आज संडे नहीं आज मंडे है। क्या होता है ना कि जिस दिन मंडे वाली छुट्टी होती है तो ऐसे ही होता है लोगों के साथ। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव, आई एम ग्लैड दैट यू आर एंजॉयिंग योर हॉलीडेज सीरियसली वाला, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट। मस्ती बॉयज आपकी चॉइस चल रहा है, थोड़ी देर पहले आपने जो गाना सुना दैट वाज दविंदर पाजी की चॉइस, यू कैन टेल मी योर चॉइस एज वेल, मैं यहाँ पे बिल्कुल खुले दिल से बिल्कुल प्ले करूंगी एंड इसीलिए तो ये पूरा का पूरा शो बना हुआ है। चलिए बात करते हैं रणवीर सिंह के, वो जो लेटेस्ट वो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं उसके लिए। पिछले हफ्ते मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे बैक टू बैक कुछ ना कुछ जो है हुआ जा रहा था, एवरी नाइट वाज काइंड ऑफ कुछ एक नया हो गया इस केस में। सो दिस इज रिगार्डिंग जो है वो वाला केस जहां पे डॉन 3 से इन्होंने एग्जिट लिया और उसके बाद फिल्म बॉडी ने कहा कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो है जो इस बॉडी के अंतर्गत आते हैं इनके साथ नॉन कोऑपरेटिव बैन नहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने निकाल दिया। सो वेल अब उसमें कुछ ऐसा कहा जा रहा है, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, दैट रणवीर सिंह जो है रीच्ड आउट टू फरहान अख्तर और उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई मांडवली कर लेते हैं यार, कोई नहीं यार हो जाती है ये सारी चीजें तो चलती रहती है, लेट्स मूव ऑन आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। सो या उन्होंने एक्सटेंड किया एक प्रपोजल टू कोलैबोरेट ऑन अ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन फिल्म ऑफरिंग द प्रोजेक्ट टू बोथ फरहान अख्तर और उनकी बहन डायरेक्टर जोया अख्तर को भी। अब अगेन जो है रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए दिस पीस ऑफरिंग वॉज टर्न्ड डाउन by the Akhtar siblings with a major 45 crore ka lawsuit on the table and the trade unions closing ranks and the situation that has come like one of the most controversial disputes filhal Bollywood mein. I really don't know what is going to happen next, but ye in dono ke beech mein itna bada deep dent pada kab, meko to yahi nahi samajh mein aa raha hai what happened and when happened and how, but that's life. Sometimes we just kind of don't know that what's going around and suddenly kuch aisa bada ho jata hai and we keep on wondering ki yaar Ranveer Singh acha khasa chal raha tha, Farhan Akhtar bhi sahi tha, ye kya ho gaya? But well, jo jaisa jaisa hota jayega waisa waisa hum aapko updated rakhte hue jayenge. Filhal ke liye hai main vare chawa, bhai koi aisi ek playlist nahi hai jisme Dhurandhar ka koi ek gana na aaya ho. So let's go. Here we go. Ranveer Singh, you have done it. Like, yeah, you just done it.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो पहुंच चुके हैं 6 बजे के उस पार गुड इवनिंग नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है मैं हूं अनुराग के साथ एंड यस लोग जो है अभी भी वो सौंधी छुट्टी के उसमें खुशी में ना मैरिनेट कर रखे हुए हैं बट कुछ ऐसा ही दिन होता है और जिसको मिल रही होती है तो उसको उसका फुल फायदा उठाना चाहिए मैं तो भाई यही कहूंगी क्योंकि वीकेंड पे मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ बट वेल ये छुट्टी जो है थोड़ी देर और है ना जब तक है उसको फुल ऑन एंजॉय कर लेते हैं भाई अपने चॉइस का गाना बता दो तो और भी ज्यादा इस बात पे और छुट्टी पे चार चांद लग जाएंगे वेल अब सीधी सीधी लाइन नहीं घुमा घुमा के यानी कि सर्कल सर्कल लाइन में बात होगी और सर्कल लाइन की बात होगी लेट्स टॉक अबाउट द सर्कल लाइन ऑफकोर्स MRT जितने भी लोग इस लाइन को लेते हैं भाई सर्कल लाइन जो है अब यूज करेगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के लेबल्स आफ्टर द फुल लूप जो कि कंप्लीट हो जाएगा जुलाई के महीने में सो कम्यूटर्स कहा जा रहा है विल सून नेविगेट द सर्कल लाइन इन दीज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द एंड स्टेशन टू कंफर्म आपका ट्रैवल का डायरेक्शन यू विल नीड टू रेफरेंस द नेक्स्ट इंटरचेंज के स्टेशन इस लूप ऑफ सर्विसेज में सो ओनली क्लॉकवाइज बाउंड ट्रेन्स जो है विल हेड टुवर्ड्स धोबीघाट ब्रास बसा एंड एस्प्लेनेड एंड अपडेटेड वे फाइंडिंग साइंस जो है वो धीरे धीरे ऑलरेडी डिस्प्ले किए जा रहे हैं एट प्रोमनाड एस्प्लेनेड बोनाविस्ता पायलबार के स्टेशन में जस्ट टू हेल्प कम्यूटर्स फेमिलराइज देमसेल्व्स विद द न्यू सिस्टम थोड़ा सा टाइम लगता है एंड इट्स वेरी गुड थिंग एंड बींग इन सिंगापुर ये मैंने देखा है कोई भी चीज ना बहुत बिल्कुल इतना स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है ना कि ये कुछ नया हो जाएगा किसी के लिए तो धीरे धीरे पहले उसको अकस्टम करा देते हैं एंड उसके बाद फिर उसको प्रॉपरली लॉन्च करेंगे सो भाई मैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कभी ऐसा कुछ देख लिया तो अचानक से ऐसे मत करना कि यार ये कब हुआ ना ये सब कुछ इन प्रोसेस चलता हुआ जा रहा है एंड वेरी सून इट विल बी द थिंग इन वाइल सो वेल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये तो हो गई हमारी MRT की बात अब हमारी म्यूजिक की गाड़ी किधर जाएगी ये जाएगी सूर्यवंशी जिसका नाम आई थिंक अब अक्षय कुमार से वो टाइटल ले लिया है हमारे इस 15 साल के खिलाड़ी ने बाय गॉड की कसम मतलब इट वाज आई थिंक सचिन का टाइम जब एवरीबडी न्यू सचिन दिस इज सूर्यवंशी का टाइम एवरीबडी नो सूर्यवंशी बट वेल IPL का जो मेजर अपडेट है वो भी आपको दिया जाएगा फिलहाल के लिए इस मूवी का रिक्रिएटेड गाना आपके लिए यहाँ पे आएगा ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

भाई लड़ लड़ लेते हैं मुझसे, लड़ लिटरली। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराव के साथ, और मैं प्ले करने वाली हूँ हमारे योगी वेर का गाना यहाँ पर, जो उन्होंने मुझे पिछले घंटे बताया था। होता क्या है कि ये हमारे जो दोस्त हैं जिनका नाम योगेश है, ये अक्सर ऐसा है जो ट्यून इन करते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर चले जाते हैं। फिर उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ना चला गया था और उसके बाद मैंने अभी ट्यून इन किया कुछ ना कुछ करके। तो मैं नॉर्मली क्या होता है, मैं पूछ लेती हूँ लोगों से कि अभी चलाऊ या फिर वो बता देते हैं कि क्या हुआ, तो फिर मैं तब चला देती हूँ, लो भाई योगेश अपना गाना सुन लो, ठीक है? और गुस्सा नहीं करते यार, कम ऑन, लेट्स लेट्स एंजॉय द गाना टुगेदर। आज उन्होंने इतनी खतरनाक मूवी देखी है इतने टाइम के बाद, तो फिर गाना तो बिल्कुल सुनना बनता है। जान तेरे नाम से कमिंग अप नेक्स्ट दिस वन।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: 40% off, 40% joy alukas,
2: 40% off, oh my god, let's go,
3: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge, joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
4: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
5: और जब ऑफर इतना शानदार चल रहा हो तो आपकी चॉइस भी होनी चाहिए एकदम वर्ल्ड की बेस्ट चॉइस, वर्ल्ड बेस्ट ज्वेलर्स की चॉइस। गहनों की बात अगर मैंने कर दी और ज्वेलरी की बात, क्या ही मजेदार ही हो गया। अभी मैं बस सोच ही रही थी इसी बारे में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा आपके साथ। तो यहाँ पर भाई मैं बात कर रही हूँ जॉर्कस वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर की। एक तो चल रहा है उनका द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, ठीक है। दूसरा, जब वो काइंड ऑफ कोइंसाइड कर जाता है कि अगर आपके जहन में कुछ टाइम से चल रहा है कि यार लेना तो है, करना तो है, कर ले क्या, एंड सडनली यू गेट टू नो कि यू नो ऐसा जॉय लुकास का एकदम ज्वेलरी सेल जहां पे 40% का फ्लैट, इनक्रेडिबल फ्लैट 40% का ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर आप गोल्ड ले लो, डायमंड ले लो, पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी ले लो, ये सामने देखा जाए तो फिर कैसे इंसान रोके कैसे अपने आप को। फिर आपको क्लैरिटी आ जाती है कि जब ऐसा मौका मिल रहा है तो उसका फायदा उठाया जाए। अगर आप भी इसी सेम बोट पे एकदम सवार है तो लेट मी टेल यू कि ये जो ऑफर है ना वो 14th जून तक ही है सिर्फ। सो यू विल हैव टू यू नो एक्ट ऑन इट अ लिटिल बिट क्विकली। बट नॉट ओनली दैट, आई थिंक यू कैन आल्सो गेट 100% वैल्यू ऑन द

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 6:30 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ सीधा चलते हैं बिल्कुल अपने सिंगापुर के सड़कों पर जानते हैं क्या है छुट्टी वाले दिन हाल चाल नो हैवी ट्रैफिक माय डियर फ्रेंड्स वीकेंड ब्रेकडाउन इस वक्त आपको मिलेगा ऑन SLE टुवर्ड्स CTE आफ्टर वुडलैंड्स एवेन्यू 12 रोडवर्क जो है वो चल रहे हैं ऑन SLE टुवर्ड्स CTE एट TPE एग्जिट और एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन KJE टुवर्ड्स PIE आफ्टर चुआचूखांग ड्राइव अवॉइड करें लेन्स 1 एंड 2 वेल ये था ट्रैफिक का अपडेट हमारे रिक्वेस्ट का अपडेट कुछ ऐसा है दैट हमारी स्वीट स्वीट चित्रा जो है वो बिल्कुल दिलजीत पाजी के मोड पे है सो शी सेड दैट कोई भी दिलजीत का गाना चला दो अंतरा एंड आई वाज लाइक मौका तो मुझे मिल ही गया आई लव दिस गाना ऑफ दिलजीत पाजी दो देयर आर अ लॉट मेनी जो मुझे पसंद है बट दिस वन हैज अ स्पेशल स्पेस इन माय हार्ट इट्स कॉल्ड तेरा नी मैं लवर लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: भाई जैकलीन ने जिस तरह के चॉइसेस कर रखे हैं अब उससे बाहर निकलना इन कॉन्सिक्वेंसेस से उनके लिए दिन ब दिन और भी ज्यादा मुश्किल होता हुआ जा रहा है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस एंड यू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन राइट। ये जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर मतलब बहुत ही फनी है यार। वो बंदा अंदर बैठे बैठे जो है एंड ही इज नॉट आउट ही इज इन द जेल ओके। वो लव लेटर्स बाहर भेज रहा है, वो अंदर से प्रॉपर्टीज खरीद खरीद के जैकलीन के नाम कर रहा है। यहाँ पर जैकलीन फर्नांडिस जो है हाल ही में वो उन्होंने कोर्ट से ये दरखास्त की थी कि मुझे वो मौका दे, मैं विटनेस बनना चाहती हूँ आपके लिए, मेरा इन सब चीजों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट देन कोर्ट ने वापस उनको कहा कि सॉरी मैडम, हमारे पास जो एविडेंस है उससे आपकी स्टोरी जो है ना वो मैच नहीं करती है। सो आई रियली डोंट नो वेयर इज दिस डेफिनेटली गोइंग राइट। भाई ये वो 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में है एंड दिल्ली कोर्ट जो है हाल ही में उन्होंने वापस से इस पे जो क्योंकि सुनवाई तो होती रहती है तो लेटेस्ट सुनवाई का कुछ ऐसा कहना है, दे हैव फाउंड सफिशिएंट मटीरियल टू प्रोसीड विद द मैटर। द केस इज एक्चुअली लिंक्ड टू दिस एक्सटॉर्शन रैकेट जो है दैट इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम किया इन्वॉल्वड लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी थ्रू मल्टीपल transactions and shell companies. Now, जैकलीन फर्नांडिस को डायरेक्टली अक्यूज नहीं किया गया है इस केस के लिए बट शी हैज बीन नेम्ड इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग्स, इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है उसके तहत। सो नाउ द कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट देयर आर इनफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड कंटिन्यू विद द लीगल प्रोसीडिंग्स। हो सकता है इस पे जो है बात और भी ज्यादा सीरियस हो जाए एंड बहुत ही कोई सख्त कदम उठाया जाए टूवर्ड्स जैकलीन फर्नांडिस एज वेल। तो ये मामला काफी ज्यादा गंभीर जो है होता हुआ जा रहा है। यू रियली डोंट नो इन लाइफ कब क्या चीज हो जाए। तभी जो है ना बड़े बूढ़े पहले से कहते हैं इट इज ऑल दोज चॉइसेस व्हिच एक्चुअली डिसाइड दैट अल्टीमेटली होने क्या वाला है एंड या इट सीम्स टू बी प्रीटी मच ट्रू। फिलहाल के लिए मेरी चॉइस गानों की वही अच्छा है, मैं इन्हीं सबसे डील करती रहूं, दैट्स व्हाट आई विश फॉर। कमाल का धुरंधर द रिवेंज एंड वन ऑफ द वेरी गुड पार्ट अबाउट धुरंधर मूवी विच आई नाउ नॉट द एक्शन सीन्स नो The contrast between the songs and the what the scene is going on. So, जब ये गाना चल रहा होता है, जिन्होंने देखी हुई है, you know that, right? संजय दत्त वाला सीन होता है. संजय दत्त सोच रहा है कि उसने outsmart कर दिया है हमजा को, और हमजा has some other plans altogether. And because it's the last scene in Dhurandhar the Revenge for Sanjay Dutt, तो उन्हीं का गाना पीछे क्या कमाल लगता है यार. What या ये दिल दिमाग दोनों लगाया हुआ है। दैट इज वेयर आई गो वाह वाह वाह वाह।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो
1: दोस्तों के बीच में। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि आप ना अगले बंदे को पहले से जान लेते हो कि मतलब ये ना यही बोलने वाला है। इसको कहते हैं कि बेटा हमने भी बहुत बहुत देख रखा है सब कुछ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतरा आपके साथ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है यहाँ पे। और चलते चलते जो है हम लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि जैकी श्रॉफ यानी कि हमारे जग्गू दादा। अभी थोड़ी देर पहले संजय दत्त की बात चल रही थी यहाँ पर, तो वही मैंने सोचा कि एकदम जग्गू दादा वाली खबर भी अभी दे ही देते हैं। भाई जैकी श्रॉफ जो है वो एकदम सेट है। व्हाई? बिकॉज वो संजय दत्त के साथ वापस से ऑन स्क्रीन नजर आने वाला है, आई थिंक बहुत टाइम के बाद। अगर देखा जाए तो खलनायक वॉज द वन वेयर हमने देखा था इन दोनों को साथ में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए। 3 decades तो हो ही गए हैं। या तो भाई खलनायक रिटर्न्स, विच इज ऑफकोर्स संजय दत्त का एक बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है। सो खलनायक मेट संजय दत्त, मतलब वी कैन से दैट, राइट? उनके जिंदगी का माइलस्टोन है एक। एंड जब खलनायक रिटर्न्स की बात हो और साथ में उनके को एक्टर इंस्पेक्टर राम ना हो, तो फिर मतलब ऑफकोर्स क्या ही हो, मतलब कैसे कंप्लीट होगा, राइट? सो वेल, ये जो इंस्पेक्टर राम वाला जग्गू दादा का जो रोल है वो अब कमिश्नर बन गए हैं। उस टाइम पे वो इंस्पेक्टर थे, अब इतने सालों बाद, काफी टाइम नहीं लग गया, 30 साल लग गए कमिश्नर बनने में। सो बट वेल या आई होप द सीक्वल डस इक्वल जस्टिस, जितना कि हमने मजे लिए थे खलनायक मूवी को ओरिजिनली देखने के लिए। क्या माधुरी दीक्षित को भी लेके आएंगे? इंटरेस्टिंग, क्या पता, यू नेवर नो, बट डेफिनेटली देर आर गोइंग टू बी न्यू फेसेस एज वेल। वेल जो जो जब जब होता जाएगा वो तब तब आपको बताया जाएगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल पप्पू का डांस जो है, जो कर नहीं सकता उसका गाना चलाया जाएगा। आप ये सोच के बताओ कि आपको कौन सा वाला गाना सुनना है। 9151896 3, that's my number. A future man.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go
5: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
6: इससे पहले कि ये घंटा खत्म हो बस 7 बजे के उस पार, जैसा कि अभी कुछ महीनों से होता हुआ आया था, बट नाउ ऑफ कोर्स इट्स द एंड। यस, हमारे जितेश जो है IPL के बारे में बात करेंगे वन लास्ट टाइम फॉर दिस IPL 2026 का सीजन जो हो चुका है रैप अप, अबाउट द हाइलाइट्स एंड ऑफ कोर्स द सेलिब्रेशन ऑफ द टीम एंड द प्लेयर्स एज वेल। तो बस आप उनसे थोड़ा सा IPL का हाइलाइट लेंगे, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड, तब तक सोच लो, गाने वाने सोच लो, मैं वापस आके प्ले करूंगी।

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Namaste, aadab, sat sri akaal, and a very warm welcome har us cricket diwane ko jo Radio Musti 24/7 Live pe tune in hai. Ji haan, main hoon aapka host aur dost Jitesh, aur ye hai the Cricket Corner IPL updates. और दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है. क्यों? क्योंकि आईपीएल 2026 का पर्दा गिर चुका है. 74 मैचेस, दो महीने का तमाशा, और कल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक एपिक फाइनल के साथ सीजन खत्म. तो चलिए आज पूरे सीजन का हाईलाइट रील क्रिकेट कॉर्नर स्टाइल में. तो सबसे पहले द बिग वन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. जी हाँ, आरसीबी ने कर दिखाया. बैक टू बैक नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा के आरसीबी बन गया आईपीएल 2026 का चैंपियन. और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों. आरसीबी सिर्फ तीसरी टीम है आईपीएल हिस्ट्री में जिसने अपनी ट्रॉफी डिफेंड की है. पहले सिर्फ धोनी की सीएसके, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, और अब इस लिस्ट में रजत पाटीदार की आरसीबी का भी नाम है. तो फाइनल का हीरो और कौन? किंग कोहली. विराट कोहली विथ हिज फास्टेस्ट आईपीएल 50 मेड 75 नॉट आउट ओनली ऑन 42 बॉल्स, और चेज रैप अप किया एक छक्के के साथ. प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली विराट कोहली. गुजरात को रसिक सलाम और भुवनेश्वर कुमार ने 155 पे रोक दिया, और बाकी का काम विराट ने संभाल लिया. बोरिंग फाइनल? बिल्कुल नहीं, क्लिनिकल फाइनल था. 2 ओवर बचे थे और आरसीबी ये ट्रॉफी जीत चुका था. तो कल सीजन फिनाले था, अब आते हैं अवार्ड्स पे. और दोस्तों, इस सीजन का असली सुपरस्टार एक ऐसा नाम है जो अभी सिर्फ और सिर्फ 15 साल का है. जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी. राजस्थान रॉयल्स का ये बिहारी सब पे बना भारी. इसने पूरा अवार्ड सेरेमनी अपने नाम कर लिया. ऑरेंज कैप उसका, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर उसका, इमर्जिंग प्लेयर उसका, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेस, ये दोनों भी उसके. मतलब एक ही शाम में 5 ट्रॉफी. लगता है ये सेरेमनी सिर्फ उसके लिए ऑर्गेनाइज हुई थी. व्हाट अ सीजन दिस 15-year-old हैड. 776 रन्स इन 16 इनिंग्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 237. वाओ वाओ वाओ. आई मीन, विश्वास नहीं होता, सिर्फ 15 साल की उम्र में ये लड़का आईपीएल के बड़े से बड़े बॉलर्स की धुलाई कर रहा है. पता ही नहीं अगले 5 साल में ये क्या क्या रिकॉर्ड बनाएगा. अच्छा, पर्पल कैप किसके पास गया? गुजरात टाइटंस के स्पीडस्टर कगिसो रबाडा के पास. He took 29 wickets and this was his second purple cap. Previously he won it in 2020. और भी अवार्ड्स थे, जैसे कैच ऑफ द सीजन. It went to Manish Pandey who took an absolutely stunning catch in the league stage. मोहम्मद सिराज ने उठाया ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड. He bowled 172 dot balls. What a season Siraj had. And Sai Sudarshan, इन्होंने मारे सबसे ज्यादा चौके. और फेयर प्ले अवार्ड गया पंजाब किंग्स को. सो फ्रॉम ऑल ऑफ अस, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. चलिए अब बाकी मैचेस का हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद. अब तब तक आप सुनते रहिए ये अगला गाना.
0: द क्रिकेट कॉर्नर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: तो इन सारे अवार्ड्स के साथ साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने, लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात करें तो सिर्फ एक ही नाम बार बार गूंजेगा, फिर से वही सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी। सबसे पहले यंगेस्ट एवर ऑरेंज कैप विनर, 15 साल 65 दिन, इतनी छोटी उम्र का रिकॉर्ड होल्डर आईपीएल ने पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर क्रिस गेल का 59 सिक्सेस का रिकॉर्ड जो 15 साल से किसी ने नहीं तोड़ा, और वो सूर्यवंशी ने तोड़ दिया। सीजन में 72 सिक्सेस, यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड बेबी बॉस ने तोड़ा। और सुनिए, एक सिंगल टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अब इनके नाम है। सूर्यवंशी जॉस बटलर को पीछे छोड़ चुके हैं और सबसे तेज 1000 आईपीएल रन बॉल के हिसाब से एंड्री रसेल का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और साथ ही साथ ये पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने एक सीजन में 550 रन बनाए हैं, वो भी 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से। बाप रे, एक ही सीजन में इतने सारे रिकॉर्ड। फिर वही कहूंगा, याद रखना ये नाम सूर्यवंशी, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। तो ये थी आईपीएल 2026 की कहानी, मेरी जुबानी, आरसीबी की बादशाहत विद बैक टू बैक टाइटल्स, कोहली का जलवा विद येट अनदर सीजन ऑफ 600 प्लस रन्स, और एक 15 साल के बाजीगर धुरंधर, जो बोलना है बोलिए, वैभव सूर्यवंशी का जादू। क्या सीजन था, क्या यादें हैं। तो इसी के साथ द क्रिकेट कॉर्नर ले रहा है एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। जैसे ही इंडियन क्रिकेट का अगला मेगा इवेंट आएगा, हम वापस आएंगे। तब तक बैट संभाल लें, बॉल पे नजर रखें और क्रिकेट देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए क्रिकेट एंड बॉलीवुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। फॉर फुल ब्रेकडाउन ऑफ द फाइनल टू मैचेस, वॉच मी विद संतोष एंड नील ऑन मस्ती AVI टुनाइट एट 8:30 PM। अगेन, this will be our season finale episode, so don't miss it. Go to the Masti AVI tab on our app and watch all episodes anytime, anywhere.
2: Achha chalta hoon, duaon mein yaad rakhna.
1: To ye tha aapka host aur dost Jitesh, the Cricket Corner pe on Radio Masti 24/7 Live. Khoob cricket dekhiye, khoob masti kijiye. Hum fir milenge. Jai Hind, Chhabba Khair.
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.

चीजें तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो.

वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंशरा यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ वापस आ चुकी है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पर। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक जितेश क्योंकि आई थिंक ये पूरा का पूरा आईपीएल का सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा। ऑल थैंक्स टू हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स यानी कि संतोष एंड नील एंड जितेश एंड ऑल्सो ऑफकोर्स हमारे आशीष जितेश जो रोज शाम को 7 बजे आकर एक क्विक हाईलाइट दे जाते थे कि क्या हुआ एंड उसके डिटेल बिल्कुल रिपोर्ट के ये मस्ती एबीआई पे 8:30 मंडे एंड फ्राइडे जो है बिल्कुल पैनलिस्ट के जैसे हर एक गेम को बारीकी से देखते हुए समझते हुए यू कैन कैच ऑल ऑफ दीज एपिसोड्स। इट विल बी लाइक अ क्विक यू नो लुक कि कैसा रहा इस बार आईपीएल 2026 का सफर। सो मस्ती एबीआई का जो टैब है हमारे ऐप में आप वहां पर जाकर वापस से ये द क्रिकेट कॉर्नर के एपिसोड बिल्कुल देख सकते हैं। इनफैक्ट आज भी रात को 8:30 बजे जो है वन फाइनल इट्स लाइक यू नो जस्ट taking a look back and also talking about the final match which happened, RCB won, everything happened, but what I think took away सबका ध्यान अपनी तरफ was this 15-year-old Vaibhav Suryavanshi. Oh my God, this boy has taken cricket lovers के तो heart away, but also those who don't understand cricket that much, उनके लिए भी was like क्या लड़का है ये, like everybody, he सबका दिल लूट के ले गया ये लड़का, seriously, दिल भी और awards भी, by the way. So IPL में एक जगह जहाँ पे एक स्टेज जहां पे एक टीम आई, टीम जीती आरसीबी और वो अपनी ट्रॉफी लेके गई और बाकी भाई हमारे सूर्यवंशी साहब ने कहा कि ठीक है बाकी जो इतने अवार्ड्स है वो मैं लेकर जाता हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रेजेंटेशन सेरेमनी कि हर्षा भोकले जी जो है एक के बाद एक अवार्ड का नाम बोल रहे थे और दिस गोज टू वैभव सूर्यवंशी अगेन द नेक्स्ट वन गोज टू वैभव सूर्यवंशी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईपीएल 2026 वैभव सूर्यवंशी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन Super striker, super sixes of the season. Everything was taken away by this teenage sensation, Vaibhav Suryavanshi. Yep. I mean, it was just amazing. And I'm sure that ye to bas shuruaat hai. He has so many long way to go, so many more games to play. And we are looking forward to it, like completely. ये बंदा है बहुत ही सॉलिड नहीं वेल इसी बात के साथ एकदम कुछ सॉलिड गाने की तरफ भेज रही हूँ सुनिए और अगर कुछ सुनने का और मूड हो जाए तो वो मुझे बता दीजिए फटाफट से 9158963 पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: 11 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: 25 सालों से आपकी भी यही एक चॉइस रही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिंगापुर में ये शाही चॉइस तो रही ही रही है, दैट्स फॉर श्योर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आंध्र आपके साथ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यहाँ पर चल रहा है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शाही महारानी। क्योंकि भाई जब 25 सालों से हमारा जो टेस्ट बड है, और जब कभी भी एक रॉयल क्रेविंग हुई है, चाहे वो दाल मखनी की क्रेविंग हो, चाहे वो जलेबी की क्रेविंग हो, चाहे वो पापड़ी चाट की क्रेविंग हो, चाहे वो उनके चिकन मक्खन वाला की क्रेविंग हो, पालक पनीर की क्रेविंग हो, दे हैव यानी कि शाही महारानी हैज ऑलवेज ऑलवेज डिलीवर्ड दोज फ्लेवर्स टू अस। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, बिकॉज कितनी बार हुआ है कि यहाँ पर जो है वाउचर्स वगैरह जीत के लोग वहां पे गए हैं, दे हैव ऑलवेज यू नो गिवन अस अमेजिंग सेट अमेजिंग थिंग्स की कितनी खूबसूरत सी मेमोरीज। अभी हाल ही में जब मदर्स डे हुआ था तो वहां से जो है मदर डॉटर की जोड़ियों को डेट पे भेजा था हमने शाही महारानी पे, एंड यू नो दीज आर दी सुनने में ऐसा लगता है कि बट इट्स सच बिग थिंग्स राइट, बिकॉज खाने के साथ हमारा रिश्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि अच्छा खाना है और मेमोरीज अच्छी बन जाए तो बस रॉयल बात वहीं पर आ जाती है। सो शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट जो है दे आर सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ देयर रॉयल फ्लेवर्स एट राफल सिटी, और इसी खुशी में उन्होंने कहा है कि उनके जो सिग्नेचर क्लासिक डिशेस है वो इस दौरान विच इज लाइक टिल 30th of June, बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग 25 साल, नो सो $25 प्लस में वो सिग्नेचर क्लासिक डिशेस आपको मिलेंगी, जैसे चिकन टिक्का हो गया, चिकन मक्खन वाला हो गया, पालक पनीर हो गया, शाही सब्ज सिजलर हो गया। सो या आई मीन इट्स जस्ट रीविजिटिंग दोज मेमोरीज एंड ऑल्सो मेकिंग द न्यू वंस एट द सेम टाइम। सो मैं तो कहती हूँ कि वापस से वहां पर जाकर उन फ्लेवर्स को एंजॉय करने के लिए नए मेमोरीज के साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल पहुंच जाइएगा, एंड पूरा इस सेलिब्रेशन में शाही महारानी के साथ होना बनता ही है। 6235-8840 दैट्स द नंबर, रिजर्वेशन करा के जाए, बिल्कुल सॉर्टेड रहेगा मामला। यू कैन ऑल्सो विजिट देयर वेबसाइट विच इज www.shahimaharani.com। भाई ये जो पूरा का पूरा प्रमोशन है इट्स ओनली अवेलेबल फॉर डाइन इन ओनली, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्सो अप्लाइड। सो वेल आई थिंक बनता तो है, बिल्कुल बनता है, एंड उसी के साथ साथ जो है हमारा अगला रिक्वेस्ट भी बनता है। अमित बहुत लेट से जो है उन्होंने अभी ट्यून इन किया एंड ही इज लाइक यार अंतराज आज थोड़ा सा एकदम ऐसा वाला गाना चल, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग मी एक्सप्रेशन वाला गाना हो जाए, अब मैं कहां से ढूंढूं वाला गाना। सो दिस इज व्हाट आई गॉट एंड आई होप यू लाइक इट, बिकॉज या बन जाएगी, नहीं है तो चॉइस बना लेना अपनी।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
4: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
3: थैंक यू
5: थैंक यू
4: थैंक यू
2: थैंक यू, वी लव यू।
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go
5: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: एक मिनट मूवी का नाम क्या बताया तुमने? काला हिरन। ओके रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मैं अंतराव के साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है बिल्कुल चल रहा है। आप बिल्कुल अगर मैं आपको बताना चाहूं कि व्हेन आई से काला हिरन ओके ये इस नाम की एक मूवी जो है वो एक रियल लाइफ हमारे एक्टर के एक इंसिडेंट से प्रेरित होते हुए ली गई है। I don't know how to react to this because now we know right kiski mana the black buck case the kala hiran like literal translation matlab there is no hiding happening over here and ye jo makers hain kala hiran ke they have released this film ka pehla poster it has been inspired by the 1998 black buck ka poaching case। सलमान खान यस करेक्ट बट इस मूवी में नहीं है लेट मी टेल यू ये मैं उस केस की बात कर रही हूँ जिससे ये इंस्पायर है। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है रिपोर्टेडली एक्सप्लोर्स द इवेंट्स सराउंडिंग सलमान खान का सुइंग द लीगल प्रोसीडिंग्स एंड द कंट्रोवर्सी दैट फॉलोड। कहा जा रहा है June 20th को आई वॉन्ट टू सी लाइक टीजर भी रिवील होने वाला है बट आई मीन क्या भाई को ये पता है? That was my first question because भाई went on a rampage few weeks ago and yeah उसके बाद से पंगे ना ही ले but I so you know I'm utterly confused whether this has been asked and this has been or this is something like Sanju। आपको क्या लगता है सुन के? मतलब या हम जितना पता चलता है उतने को लेकर और जैसा जो आएगा उसको लेकर हम एडजस्ट कर ले। आई थिंक दैट्स मच मच बेटर आइडिया। नो डोंट यू थिंक सो? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया बट लाइक रियली दे मेड अ मूवी ऑन इट। आई मीन ओके इफ यू से सो। या गुड इवनिंग।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: Irfan and Arijit, they just kind of, in the awaz and this kind of gana just hits the right spot at times. Radio Masti 24/7 live, par khush abhi bhi khushi ho ke. आई नो कल से वापस रूटीन पे चले जाना है. हो गया लॉन्ग वीकेंड और हो गया मंडे का छुट्टी और एवरीथिंग. या प्रिपेयरिंग लेट मी हेल्प यू लाइक एवरी मंडे आई से. कल सुबह वापस मैं आ जाऊंगी आपका ट्यूजडे मॉर्निंग को और भी हसीन बनाने के लिए. हमारे लिए तो नॉर्मल है, हमारी तो छुट्टी थी नहीं तो हमें नॉर्मल ही लग रहा है कि हमारा मंडे हो गया है, अब हमारा ट्यूजडे आएगा. सो वेल टुमारो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग. मस्ती का मंत्रा करेंगे अंतरा के साथ. फिलहाल आज रात का सीन कुछ ऐसा है कि 8:30 बजे फाइनल एपिसोड ऑफ द क्रिकेट कॉर्नर आईपीएल 2026 को रैप अप करते हुए मस्ती एवीआई पर बिल्कुल देखना ना भूले. सारे काम हो गए ना अंतरा? बिल्कुल हो गए. अब बाकी के काम कल सुबह देखा जाएगा, है ना. एंड अपनी अपनी चाय और बिल्कुल टाइम से पहले पहुंच जाना, ट्यून इन करना भूलना मत, है ना. याद दिला के जा रही हूँ पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एंड विद लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार आदाब तमाम सुनने वालों को सिंगापुर, मैं हूँ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के जरिए आपसे मुखातिब। मेरा नाम है समर, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर, एक ऐसा शो जिसमें हम यादें ताजा करते हैं, फिल्मों की यादें, फिल्मों से जुड़ी हमारी यादें, उन फिल्मों के बेहतरीन नगमे सुनाते हैं, क्योंकि हर गाना कुछ कहता है और हर गाने के साथ एक कहानी छुपी होती है, कुछ यादें लिपटी होती हैं, है कि नहीं? तो ऐसी ही कुछ यादों को लेकर इस बार मैं हाजिर हुआ हूँ 1990 के साल से। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने कमबैक किया था। जी हाँ, जब उनको चोट लग गई थी कुली में, उसके बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी सी दूरी बना ली थी और फिर वो राजनीति में भी आ गए थे। आपको तो याद ही होगा, उन्होंने इलाहाबाद से एमपी का चुनाव लड़ा और वो जीते, 1984 की बात है। और उसके बाद से फिल्मों से उनकी थोड़ी दूरी बढ़ती चली गई और फिर मीडिया से भी उनका टकराव हुआ, तो कुल मिलाकर उनको बायकॉट सा किया गया था और उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम कम और कम से भी कम होती जा रही थी। ऐसे में उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और ऐसे जमाने में एक फिल्म आई जिसने उनके करियर को फिर से पुश दिया और ये वो फिल्म थी जिसका नाम था कौन सुने फरियाद। नहीं नहीं, पहले इसका नाम ये होने वाला था लेकिन बाद में हुआ आज का अर्जुन, जो केसी बोकाड़िया साहब के डायरेक्शन में बनी और बप्पी दा का म्यूजिक लिए जबरदस्त हिट हो गई। अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन थी इसमें जया प्रदा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, सुरेश ओबेरॉय और अमिताभ बच्चन की जो सिस्टर बनी थी राधिका सरत कुमार, जिन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन अफसोस ये उन्हें मिला नहीं। लेकिन अमिताभ बच्चन और जया प्रदा को इसमें किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया गया। फिल्म जबरदस्त हिट हो गई और इसके गाने तो हिट होने ही थे। बप्पी दा ने कमाल का म्यूजिक दिया, वो गाना गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, लता जी की आवाज और शब्बीर कुमार ने उनका साथ दिया, गाना सुपर डुपर हिट हो गया। इसके अलावा एक और गाना था जिसका जिक्र मैं जब भी करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि अमिताभ बच्चन जैसे समझदार इंसान ने ये वक्त क्यों दिया, 3:30 बजे। हाँ, चले आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। फिर मुझे जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि भाई 3:30 बजे सारा गांव सो जाएगा तो ऐसे में मिलना आसान हो जाएगा। भीमा का रोल कर रहे थे अमिताभ बच्चन और कमाल का उन्होंने रोल प्ले किया। एक तरह से एक सीधे साधे इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन था अर्जुन में, जो बदला लेता है गांव के जमींदार से, जिसके गुनाहों और जुल्मों से सारे गांव वाले त्रस्त हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो ऐसे में अर्जुन आता है और गांव वालों को उसके जुल्म से आजाद कराता है। ये थी फिल्म की कहानी। फिल्म हिट रही और उसने सिल्वर जुबली की। सिल्वर जुबली बहुत सारे लोग जो आज के हमारे सुन रहे हैं यंगस्टर्स वो नहीं समझते होंगे। सिल्वर जुबली एक फिल्म तब करती थी जब वो 25 हफ्ते लगातार एक सिनेमा हॉल में चलती थी। 25 हफ्ते, 25 वीक्स, आज तो सोच भी नहीं सकते। 100 दिन भी अगर कोई फिल्म चल जाती है तो बहुत बड़ी हिट मानी जाती है और 100 दिन मतलब 12-13 वीक्स, वो दौर ही कुछ और था। तो चलिए उस दौर को जी लेते हैं, इन नगमों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सुनते रहिएगा यादों का कारवां रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं हूं समर आपके साथ।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1990 के ईयर से। ये वो साल था जब इस दौर की एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म आई। नाम था उसका आशिकी रोमांस। जी, आशिकी सीरीज की पहली फिल्म थी, सीरीज बन गई है बाद में तो, लेकिन इस फिल्म ने कमाल कर दिया था। एक्चुअली इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि गुलशन कुमार साहब ने कैसेट इंडस्ट्री में नया नया पैर जमाया था और वो नए सिंगर्स को बहुत मौका देते थे। ऐसे एक नए सिंगर थे कुमार सानू, जो कोलकाता के क्लब्स में गाया करते थे। जब उनके किसी दोस्त ने उन्हें सलाह दी तो वो मुंबई आ गए और वहां पर भी वो क्लब्स में गाने लगे। यहां गुलशन कुमार के एक क्रिएटिव डायरेक्टर ने उन्हें देखा एक क्लब में गाते हुए और उनकी आवाज से बड़े ही इंप्रेस हो गए और उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो हूबहू किशोर दा की तरह गाता है। तो उस जमाने में गुलशन कुमार एक सीरीज निकाला करते थे यादें के नाम से, जैसे हम यादों का कारवां कर रहे हैं, ऐसे वो यादें सीरीज निकाला करते थे और उसमें वो कवर वर्जन गवाया करते थे, जैसे रफी साहब, लता जी और किशोर के गाए हुए गानों को वो फिर से गवाते थे और वो उसके लिए कोई ऐसे ही सिंगर्स ले लिया करते थे, उनकी तलाश रहा करते थे उन्हें। तो कुमार सानू ने उनकी किशोर कुमार के लिए जो उनकी एक खाली जगह थी, वो जो तलाश थी, उसे पूरा कर दिया। और गुलशन कुमार क्योंकि नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो वो पुराने लोगों से काम लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सब बहुत महंगे और एस्टेब्लिश्ड लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने मौका दिया ऐसे ही एक नए म्यूजिक डायरेक्टर को, नदीम सैफी और श्रवण राठौड़। ये एक जोड़ी बनाकर कमाल का म्यूजिक दे रहे थे। तो उन्होंने एक एल्बम प्लान किया, नाम उसका आशिकी रखा गया और उसमें 9 गाने रिकॉर्ड किए गए। गाने जबरदस्त हिट थे और इन गानों को गुलशन कुमार साहब ने महेश भट्ट साहब को सुनाया। महेश भट्ट साहब बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा इस पर तो एक फिल्म बननी चाहिए। गुलशन कुमार साहब को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, फिल्म बननी चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन? फिल्म बनाने का मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो उन्होंने महेश भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की कि यार आप फिल्म बनाइए, मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो इस तरह से ये फिल्म बनी आशिकी, जिसने अपने म्यूजिक से उस दौर के तमाम लोगों को आशिकी में डुबो दिया। फिल्म से निकले कई स्टार्स और छा गए बॉलीवुड के आसमान पर। पहले राहुल रॉय जो इस फिल्म के हीरो थे, उनकी हेयर स्टाइल बड़ी कमाल की थी इस फिल्म में, लोगों ने वैसी हेयर स्टाइल करवा ली थी। बड़े अजीब लगते थे लोग शुरू में, लेकिन बाद में तो भैया यही फैशन बन गया। अनु अग्रवाल उनकी हीरोइन थी, वो लंबी चौड़ी लड़की, और उनकी एक फ्रॉक और उनका जो हेयर क्लिप पर एक रिबन बना हुआ था वो बड़ा ही फेमस हो गया था। इसके अलावा नदीम श्रवण एक नए म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी के रूप में एस्टेब्लिश हो गए इसी फिल्म से। समीर के लिखे गाने कमाल के हिट हो गए थे। तो इस तरह से ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ओए होए क्या बात थी इस गाने में। और वो सांसों की जरूरत है जैसे, जिस गाने से राहुल रॉय इंट्रोड्यूस होते, कमाल का ये गाना। फिर अब तेरे बिन जी लेंगे हम, कमाल कमाल कमाल। फिर दीपक तिजोरी भी हीरो के दोस्त के रूप में हिट हो गए थे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि हीरो के दोस्त के रूप में हिट हो गए थे, क्योंकि ये

फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, मिलना लाजमी था, इतना कमाल का म्यूजिक दिया था उन्होंने। तो आइए इन गानों को एंजॉय करते हैं और इस दौर के कुछ और गानों के साथ कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म आशिकी, और उन्हीं के डायरेक्शन में बनी एक और फिल्म की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आशिकी की बात तो पूरी कर लूं। जी तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ, यादों का कारवां में आप सफर कर रहे हैं। प्लीज इस कारवां को आगे बढ़ाइए ऐसे ही, और कुछ यादें जो आपको आ रही हैं इन गानों के साथ, इन फिल्मों के साथ, जो भी आपके साथ जुड़ा है उस दौर का, वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल हम बात करते हैं फिर से आशिकी की, और उसके बाद उनकी एक और फिल्म की बात करेंगे महेश भट्ट साहब की। तो आशिकी की जो कहानी है, कैसे एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को पसंद कर लेते हैं राहुल रॉय, और फिर सारी कहानी होती है आशिकी होती है। तो ये कहानी खुद महेश भट्ट की कहानी से इंस्पायर्ड है। जी आपको शायद नहीं पता हो कि महेश भट्ट साहब की एक और पत्नी रही है। जी हाँ, उनकी पहली पत्नी जिनका नाम था लॉरेन ब्राइट, जो बाद में किरण भट्ट हो गई, ये उन्हीं की कहानी है। और पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की मदर भी किरण भट्ट हैं। महेश भट्ट साहब से उम्र में बड़ी थी किरण लॉरेन ब्राइट, और उनको वो ऐसे ही खिड़की से देखा करते थे, एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी, और वहीं से इस कहानी की इंस्पिरेशन उन्होंने ली और एक कहानी पिरो दी। कहानी जबरदस्त हिट हो गई, और जब इस कहानी को साथ मिला बेहतरीन म्यूजिक का, तो सुपर डुपर हिट हो गई, उस साल की बेस्ट फिल्म, मैं तो कहता हूँ उस डेकेड की बेस्ट फिल्म्स में से शुमार है ये। फिलहाल तो मैं बात करूंगा महेश भट्ट साहब के डायरेक्शन में बनी एक और फिल्म की, आवारगी उसका नाम था। ये थोड़ी सी आर्ट टाइप की फिल्म थी, पैरेलल सिनेमा जिसे कहा जाता है, वो उस दौर की ऐसी एक फिल्म थी। लेकिन इसमें जो कास्ट थी वो कमर्शियल फिल्मों की थी, जैसे कि इस फिल्म में थे अनिल कपूर साहब, गोविंदा, मीनाक्षी शेषाद्री, अनुपम खेर, परेश रावल। म्यूजिक दिया था इस फिल्म का अनु मलिक ने, और गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। इस फिल्म की एक गजल बड़ी हिट हुई, गुलाम अली साहब ने इसे गाया था, चमकते चांद को, और इस गजल ने हर टूटे दिल के शख्स के लिए मरहम का काम किया था। अच्छा, इसी फिल्म में एक और गाना भी था, ए मेरे साथिया, मोहम्मद अजीज और लता जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना, ये भी बड़ा हिट हुआ। एक और गाना बाली उमर ने मोहम्मद अजीज और लता जी की आवाज में था, ये भी सुनेंगे आप तो बड़ा सुकून सा मिलता है दिल को। तो एक काम करते हैं, इस फिल्म के कुछ नगमे सुन लेते हैं और उस दौर के कुछ और गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोविंदा और महेश भट्ट साहब की ये पहली और आखिरी फिल्म थी, लेकिन अनिल कपूर साहब के साथ उनकी ये पहली और आखिरी फिल्म नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दीवाना मस्ताना में भी काम किया था। चलिए गाने सुने, कारवां को आगे बढ़ाते हैं। भाई बहुत सारी यादें आ जाती हैं इन गानों के साथ, तो सोच क्या रहे हैं, अपनी यादों को आने दीजिए ना हमारे फेसबुक पेज पर। सुनते रहिए यादों का कारवां, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: 1990 के दौर से गुजर रहा है आज का हमारा ये यादों का कारवा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर आपके साथ। इसी साल यानी 1990 में एक और फिल्म आई, रोमांटिक फिल्म, कमाल की फिल्म, आशिकी जैसी हिट गानों से सजी फिल्म। नाम था उसका, बताऊं या समझ गए आप? चलिए एक और हिंट दे देता हूं, माधुरी दीक्षित और आमिर खान थे इस फिल्म में। अब तो आप समझ गए, सुपर डुपर हिट फिल्म दिल की मैं बात कर रहा हूं। इंद्र कुमार साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई इस साल की। इसका म्यूजिक भी दो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी ने दिया था, आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त ने। जी, आनंद मिलिंद के नाम से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। फिल्म में अनुपम खेर का रोल बड़ा पसंद किया गया, अनुपम खेर और सईद जाफरी दोनों का। ये लड़के और लड़की के पिताजी बने दोनों, लड़की के पिताजी सईद जाफरी और बड़े ही कंजूस कबाड़ी वाले अनुपम खेर, ये बड़े हिट हुए थे अपनी कैरेक्टर में। फिल्म के गानों की बात करें तो आनंद मिलिंद का म्यूजिक, गाने लिखे समीर ने और गाने एक से बढ़कर एक हिट हुए। अच्छा, इस फिल्म के गाने आपको बताने की जरूरत है या आप पहचान जाएंगे? मुझे नींद ना आए, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। फिर एक गाना था हमने घर छोड़ा है, ये उदित नारायण के साथ साधना सरगम ने गाया था, ये गाना भी हिट हुआ। इसके अलावा एक और गाना था खंबे जैसी खड़ी है, ये गाना भी हिट हुआ। हालांकि इसके बोल उतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये मस्ती से भरा हुआ गाना था तो भाई ये तो हिट होना ही था। रेडियो मस्ती भी हिट है ना, इसीलिए तो हिट है क्योंकि इसमें मस्ती है। तो जिन लड़कियों की हाइट उस वक्त ज्यादा होती थी ना, उनके लिए गाना बहुत गाया जाता था, खंबे जैसी खड़ी है। इसी साल आमिर खान और माधुरी दीक्षित की एक और फिल्म आई थी, दीवाना मुझसा नहीं। हालांकि ये फिल्म बहुत ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाई। और आमिर खान की अगर मैं करियर की बात करूं तो शुरू शुरू में उनको जो बहुत सक्सेस मिली थी कयामत से कयामत के बाद, वो ज्यादा इसे रख नहीं पाए, इसे भुना नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसी फिल्में करते रहे, तुम मेरे हो, लव लव लव, जवानी जिंदाबाद। तो ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी अव्वल नंबर। लेकिन ये जो फिल्म थी 1990 में ही आई दिल, इसने तो भैया उन्हें हर कॉलेज की शान बना दिया, हर लड़की के दिल की जान बना दिया। लेकिन इसके बावजूद आमिर खान बहुत हिट हो गए, उन्हें नहीं मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस फिल्म के लिए, बल्कि माधुरी दीक्षित को जरूर मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो एक काम करते हैं, इन गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी यादें आपको भी आ रही होंगी, हमें बताइएगा और सुनते जाइएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं हूँ समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव और आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। चलिए एक एक्शन थ्रिलर की बात कर लेते हैं। दो बैक टू बैक रोमांटिक फिल्मों की हमने बात की, लव स्टोरीज की बात की, तो हमने सोचा कि एक एक्शन थ्रिलर और कमाल के डायलॉग से भरपूर फिल्म की बात कर ली जाए। मैं बात कर रहा हूं राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म घायल की। सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, अमरीश पुरी, ओम पुरी जैसे कलाकारों ने अपनी अभिनय क्षमता से फिल्म को यादगार बना दिया। म्यूजिक इसमें बप्पी लाहिड़ी ने दिया था और गाने लिखे थे इंदिवर और अनजान साहब ने। इस फिल्म का वो गाना था सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। ये एक बोलिवियन ग्रुप था, उसने गाया था लियोरेंडो से फ्यू। ये उससे इंस्पायर था। इंस्पायर क्या था? कॉपी था जी, बिल्कुल सेम टू सेम म्यूजिक था। और बप्पी दा इन दिनों में बहुत ज्यादा वेस्टर्न म्यूजिक से इंस्पायर्ड हो गए थे। ये 1981 का गाना था जिसे 1986 में मार्सिया फरेरा ने गाया और इसका एक और कवर वर्जन बनाया लंबाड़ा के नाम से, जो कि बहुत हिट हुआ। तो कुल मिलाकर 1989 में तो ये हिट सॉन्ग्स में था, वर्ल्ड के हिट जो चार्ट बस्टर्स थे उनमें से एक गाना था। तो इसकी ट्यून घायल में इस गाने में ली गई। कुमार सानू, शबीर कुमार और आशा भोसले ने इस गाने को गाया और ये गाना दोनों वर्जन में बना, मतलब सैड वर्जन भी है इसका और हैप्पी वर्जन भी है। इस फिल्म के लिए सनी देओल को मिला उस साल का बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड और राजकुमार संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। अच्छा, इस फिल्म का एक और गाना था जिसे एस जानकी ने गाया था। एस जानकी उस जमाने में बप्पीदा की फेवरेट सिंगर्स में से हुआ करती थी। उन्होंने एक गाना गाया था प्यासी जवानी है, ये मंगता है तो आ जा रसिया, नहीं तो मैं ये चलिए, जो इनकार मूवी का गाना था ना उससे एज इट इज ले लिया गया था। वैसे ही गाना, वैसे ही म्यूजिक। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बप्पीदा ने बड़े कॉपी किए इस वक्त गाने, नहीं लेकिन जो भी किया गाने कमाल के बना दिए, हमें सुनने को और सुनाने को कुछ नया दे दिया। तो चलिए इस फिल्म से और उस दौर के कुछ गानों से इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं।

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
6: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। समर है आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। देखिए, आज जो हमारा कारवां है ये 1990 के साल से गुजर रहा है, 1990 से। तो उस फिल्म का भी जिक्र कर लेते हैं जिसके गाने ने अभी थोड़े दिन पहले रिविजिट किया था, और वो पिक्चर यहाँ अपने सिंगापुर में पिक्चराइज थी। उसका लेटर हाफ, सेकंड हाफ जो था वो यहीं पिक्चराइज था। एनी गेसेस? एनी गेसेस? हाँ, आप पहचान गए। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत, ये तम्मा तम्मा लोगे जी। यू गेस इट राइट, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में ये गाना रिविजिट हुआ था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी ओरिजिनल फिल्म की। जी, ये थी थानेदार। वैसे ये गाना भी एक अफ्रीकन ट्यून से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड है या कॉपीड है, अब मैं नहीं कहूंगा। बब्बीदा का म्यूजिक और अनुराधा पोडवाल के साथ बब्बीदा ने इस गाने को गाया। इंदिवर के बोल थे, सीधे दिल को तो छूता ही है, शरीर में करंट पैदा कर देता है, आप डांस करने की इच्छा लेकर फ्लोर पर आ जाते हैं। और आ जाना भी चाहिए भाई, जब दिल में मस्ती हो तो उसे दिखा भी देना चाहिए। और डांस करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको देखकर कोई क्या कहेगा। डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, बस डांस कीजिए मस्त बिंदास होकर। थानेदार में थानेदार कौन थे? नहीं, संजय दत्त तो थे ही, लेकिन वो फर्जी थानेदार थे। असली थानेदार थे जितेंद्र साहब। तो जितेंद्र साहब तो अचानक गायब हो जाते हैं जब एक गांव में उनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन गांव में पहुंच जाता है एक क्रिमिनल संजय दत्त, और गांव वाले उन्हें ही मान लेते हैं थानेदार। फिल्म बड़ी मजेदार बन गई। माधुरी दीक्षित है इसमें संजय दत्त की हीरोइन, और बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं उसमें। एक गाना था जुल्मी सैया थानेदार, एक गाना था जीना है तो हंस के जियो। अच्छा, जया प्रदा थी जितेंद्र की हीरोइन इस फिल्म में, और माधुरी दीक्षित थी संजय दत्त साहब के साथ। तो कुल मिलाकर कहानी बड़ी मजेदार थी, बड़ी कॉमेडी और बड़े एक्शन थ्रिलर वाली ये फिल्म थी। फिल्म हिट हो गई तो गाने भी हिट हो रहे थे। गाने हिट हुए और एक कॉन्ट्रोवर्सी और हो गई। उसी साल आई फिल्म हम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और उसमें एक सेम कॉम्पोजिशन वाला गाना जुम्मा जुम्मा दे दे तम्मा तम्मा लोगे। तो दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स में ठन भी गई थी कि असली म्यूजिक कॉम्पोजिशन उनकी है। दोनों ने दावा किया, लेकिन असल बात कुछ और ही थी। ये जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन थी ये फॉरेन की म्यूजिक से इंस्पायर्ड थी या कॉपीड थी, फिर से नहीं बोलूंगा। तो कुल मिलाकर ये गाना जो था, ये दोनों ही गाने हिट हो गए। राजन सिप्पी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक साउथ इंडियन मूवी थी, अनबुक्कू नान अदिमई, ये 1980 में आई थी, उस पर बेस्ड थी। फिल्म हिट हुई, 10 दिसंबर 1990 को रिलीज हुई और ये फिल्म चल पड़ी। तो जब फिल्म चल पड़ी तो इस कारवां को भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। क्या कहते हैं आप? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बने रहिए समर के साथ। इन नगमों के बाद फिर से करता हूं आपसे मुलाकात।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां। ये जो साल था 1990, एक तरह से माधुरी दीक्षित का साल था, ये कहना गलत नहीं होगा। एक से बढ़कर एक हिट फिल्में वो दे रही थी। ऐसे में एक और हिट फिल्म आई थी, उनकी नाम था उसका सैलाब। आदित्य पंचोली उनके साथ हीरो थे और कुलभूषण खरबंदा उनके साथ थे। दीपक बलराज विज का डायरेक्शन था, बप्पीदा का म्यूजिक था, जावेद अख्तर ने गाने लिखे थे। हमको आज कल है इंतजार, अनुपमा देश पांडे ने इस गाने को गाया और माधुरी दीक्षित ने जो कमाल का डांस किया ना साहब इस पर, वो तो मतलब क्या कहें उसके बारे में। खुद अमिताभ बच्चन साहब जब ये गाना शूट हो रहा था तो वहां थे और वो माधुरी को डांस करते हुए जैसे खो गए थे। वो कहते हैं जादू चल रहा था वहां पर। मैं समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। जब कट हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक गाने की शूटिंग चल रही थी। खुद अमिताभ बच्चन मेस्मराइज्ड हो गए थे इस गाने के डांस स्टेप्स से। तो ये कमाल था माधुरी का। अच्छा, ये जो फिल्म थी सैलाब, ये लिखी थी रीमा राकेश नाथ ने। राकेश नाथ से तो शायद आप वाकिफ हों। राकेश नाथ बड़े स्टार सेक्रेटरी कहे जाते थे और माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी हुआ करते थे उस जमाने में। रिकू नाम था उनका। फिल्म प्रोड्यूसर भी वो बाद में बने। और ये जो थी रीमा, इन्होंने कमाल की फिल्में लिखी। उनकी पत्नी है रीमा और इनका फिल्म खानदान से बड़ा लंबा चौड़ा रिश्ता रहा है। सप्रू साहब को शायद आप नहीं जानते हो, डी के सप्रू। बहुत सारी फिल्मों में विलेन भी रहे, कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे। पाकीज़ा में वो देखे जा सकते हैं, हीर रांझा में वो थे, साहेब बीवी और गुलाम में भी थे, बहुत सारी फिल्मों में थे। अगर आप उनको सर्च करेंगे, उनकी फोटो को देखते ही आप पहचान जाएंगे। तो उनकी पुत्री है रीमा राकेश नाथ और इनके सुपुत्र को भी आप जानते होंगे, करण नाथ उनका नाम है। और जो 2002 में एक फिल्म आई थी ये दिल आशिकाना, उसके गाने बड़े हिट थे, उसके हीरो थे ये। तो कुल मिलाकर ये जो फिल्म थी, इसकी कहानी थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। फिल्म के गाने हिट हुए और जिस गाने का मैं जिक्र कर रहा था उसके लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल। हमको आजकल है इंतजार, इसमें मछुआरन की ड्रेस पहनकर डांस कर रही हैं माधुरी दीक्षित, बहुत ही कमाल का। कभी मौका मिले तो आप फैन हो जाएंगे आप, मैं कह रहा हूं आप ये गाना देख लेंगे तो। तो चलिए, और इस फिल्म की एक और खास बात थी कि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर था वो आदेश श्रीवास्तव ने दिया था, वो बहुत ही कमाल का है। फिल्म देखेंगे तो मजा आएगा। फिलहाल ये गाने सुन लेते हैं और कुछ यादों को ताजा कर लेते हैं। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

वो सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ, लेकर यादों का कारवां। और आपके बगैर ये कारवां अधूरा है, आप हैं तो इस कारवां में रौनक है, रोशनी है। तो चलिए, आज 1990 की कुछ फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से एक और फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित इस डेकेड के दो सबसे बड़े सितारों के रूप में उभर चुके थे। तो माधुरी दीक्षित की हमने बहुत बात कर ली, अब अनिल कपूर साहब की बात कर लेते हैं। डबल रोल में उनकी एक फिल्म आई, डबल रोल वही, एक सीधा साधा एक तेज तर्रार, सीता और गीता, राम और श्याम, बस उन्हीं फिल्मों का एक तरह से ये रीमेक थी। ये थी कृष्ण कन्हैया। माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, श्रीराम लागू, कादर खान इस फिल्म में मेन लीड रोल में थे। राजेश रोशन का संगीत था, इंदिवर ने गाने लिखे थे, और आपको तो मालूम ही होगा ये फिल्म ऑफकोर्स राकेश रोशन ने डायरेक्ट की थी। राकेश रोशन की एक खास बात है, उनकी कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लीजिए जो उन्होंने बनाई है, जो प्रोड्यूस की है या डायरेक्ट की है, उसका नाम के से शुरू होता है। चाहे वो कामचोर हो, कृष्ण कन्हैया हो, कोयला हो, खून भरी मांग हो, कृष हो, कोई मिल गया हो, ये तमाम फिल्में जो भी आप उनकी फिल्में देखेंगे वो सब के नाम से शुरू होती हैं। ऐसा कुछ उनका सुपरस्टिशन है कि के नाम से शुरू होंगी तो फिल्में हिट होंगी। अभी तक वैसे उनका ये जो है अंधविश्वास, इसे कह लीजिए या सुपरस्टिशन, ये अभी तक कामयाबी हुआ है। तो कृष्ण कन्हैया के गानों की बात कर लेते हैं। गाने ठीक ठाक थे, एक तो था सूट बूट में आया कन्हैया डांस दिखाने को। अच्छा, एक और गाना था जो काफी हिट हो गया था उस वक्त, वो था नितिन मुकेश और लता जी का गाया कृष्णा कृष्णा। फिर उसके अलावा एक और अलग तरह का गाना था, डिस्को बीट पर था, आपको देख के देख देख के रास गया ये जान, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज में था ये गाना, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। वैसे शिल्पा शिरोडकर वाले रोल के लिए पहले सोनू वालिया को अप्रोच किया गया था, पर उनसे ज्यादा तवज्जो दी गई शिल्पा शिरोडकर को और ये फिल्म उन्हें मिल गई। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की केमिस्ट्री इस फिल्म के बाद और ज्यादा गहरी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि गॉसिप वर्ल्ड में क्या चल रहा होगा, हाँ? उन सब से इन दोनों को गुजरना पड़ा, लेकिन इनकी केमिस्ट्री पर इससे कोई असर नहीं पड़ा। तो चलिए फिलहाल तो उस दौर के कुछ गानों से इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण कन्हैया देखिए आपने, कैसी लगी थी बताइएगा हमें।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.

विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है। दमदार आवाज के साथ ये दमदार डायलॉग है फिल्म अग्निपथ का। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत, मैं हूँ समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, नीलम, डैनी, रोहिणी हथंगड़ी के अभिनय से सजी थी ये फिल्म अग्निपथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था इस फिल्म में और आनंद बख्शी ने गाने लिखे थे। एक डॉन की कहानी पर बेस्ड ये फिल्म मुकुल आनंद के डायरेक्शन में बनी थी। फिल्म मुकुल आनंद के लिए कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई स्क्रीन प्ले राइटर नहीं हुआ है। जिस तरह से वो फिल्म को लिखते थे, पूरी की पूरी कहानी दिखाई दे जाती थी। उन्हीं के डायरेक्शन में बनी थी हम भी, लेकिन वो एक फिल्म पूरी नहीं कर पाए थे जिसका नाम था 10, जिसे उनके इस दुनिया से जाने के बाद पूरा किया गया। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ में अमिताभ बच्चन साहब की हीरोइन थी माधवी। माधवी के साथ अमिताभ बच्चन पहले भी काम कर चुके थे और वो फिल्म थी अंधा कानून। हालांकि इस फिल्म में कांचा चीना को कोई नहीं भूल सकता है। डैनी डिन्जोंगपा ने ये रोल किया था और कांचा चीना तो जो नई वाली अग्निपथ आई थी उसमें भी बहुत कमाल के थे, वो थे संजय दत्त। और उसमें जो विजय दीनानाथ चौहान का रोल किया था वो किया था ऋतिक रोशन ने। फिलहाल तो ये जो फिल्म थी अग्निपथ, इसका जिक्र कर लेते हैं। इस फिल्म में एक पोयम है, अग्निपथ अग्निपथ, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पोयम है जिसे यूज किया गया था। आलोकनाथ जो छोटे अमिताभ बच्चन होते हैं, जो विजय होता है जब छोटा बचपन में, तो उसको सुनाते हुए जाते हैं। अब ये बहुत हिट है और लोग इसे सुनना चाहते हैं। इसके एक एक शब्द में मोटिवेशन छिपा है। बहुत ही कमाल की कविता है, बहुत ही जबरदस्त पोयम है। कभी सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। क्या मैं सुना दूं? चलिए अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो कुछ लाइन सुना देता हूं मैं, सारी सुना दूं। चलिए सुन लीजिए। कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक छत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जोश आया? हम तो कहते हैं भैया जोश में रहो, मस्ती सुनेंगे तो जोश में रहेंगे। फिलहाल इस फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। इसमें एक गाना था, गणपति अपने गांव चले। ये जो गणपति महोत्सव होता है महाराष्ट्र में और खासकर अब तो पूरे हिंदुस्तान में होने लग गया और हिंदुस्तान के बाहर भी होने लग गया है, तो उसका ही एक सीन था। सुदेश भोंसले और कविता कृष्णमूर्ति ने इसमें अपनी आवाज दी थी और ये गाना अभी भी गणेश महोत्सव पर बजने वाले टॉप गानों में से एक है। जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो ये गाना अक्सर सुनाई दे जाता है मुंबई में तो खासतौर से। वहीं इस फिल्म का एक और गाना था, नीलम और मिथुन के बीच नोकझोंक होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है, आया मैं कृष्णा आया रैया में। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इस गाने को गाया और ये गाना जितना सुनने में बढ़िया लगता है उतना ही देखने में भी कमाल का है। बड़ा मजा आता है इस गाने को देखकर। ये जो गाना है इसमें मिथुन चक्रवर्ती एक साउथ इंडियन बने हैं और वही ड्रेस पहनकर, नारियल पानी वाले हैं, वही ड्रेस पहनकर अमिताभ बच्चन साहब को एक बार बचाते हैं वो और वही लुंगी उंगी पहनकर इस गाने में दिखाई देते हैं, डांस करते हैं। अमिताभ बच्चन को नेशनल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए और मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इसी फिल्म के लिए। रोहिणी हथंगड़ी को भी बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए। ये फिल्म बड़ी कमाल की थी, बहुत सारी यादें हैं इसके साथ। अमिताभ बच्चन साहब ने इसमें एक अलग तरह की आवाज निकाली थी कि ये जो मेरा कैरेक्टर है विजय दीनानाथ चौहान का, उसके लिए मैं ये आवाज दूंगा। सुनने में ये आता है कि उस वक्त लोगों ने कहा कि यार इस आवाज के साथ ये फिल्म जम नहीं रही है, ये तुमने क्या किया यार, तो इसे रीडब किया गया उनकी ओरिजिनल आवाज में। लेकिन बाद में उसे उस आवाज के साथ जो उनकी ओरिजिनल आवाज है उसके साथ रिलीज नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर बहुत सारी कहानियां इस फिल्म के साथ। ये फिल्म है बड़ी कमाल की और ये यादें तो प्राइसलेस। तो आइए इन यादों के साथ इस यादों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो।

मस्ती करते, तो मेरा का मजा करते, मेरा साउथ का मजा करती है। देख आज मैं लूंगे उठा का तुमको डिस्को नारियल दिखाएगी। अच्छा बात कर रहा

0: अंतरजाति।
1: जोश में रहो। राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: 40% off, 40% joy alukas,
5: 40% off, oh my god, let's go,
6: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। जाने का वक्त, और जाने से पहले आपसे करना चाहता हूं कुछ और बातें। एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, लेकिन क्योंकि ये फिल्म बहुत आखिर में आई थी उस साल की, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र भी आखिर में कर लेते हैं। ये फिल्म है साजन की। जी, साजन और काजल की लव स्टोरी है। कुछ समझ आया आपको? दीपक शिवदासानी का डायरेक्शन है और जावेद सिद्दीकी ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा। म्यूजिक इसका बड़ा हिट हुआ था, आनंद मिलिंद का म्यूजिक था। कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि नहीं आप? चलिए, जब मैं इस गाने का जिक्र करूंगा तो आप समझ जाएंगे। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। और एक और गाना था।

या फिर वो वाला एक चंचल शोख हसीना मेरे ख्वाबों में आए, या फिर टप टप टप टपोरी, कमाल के गाने। और मुझे जो पसंद है वो मांग तेरी सजा दूं मैं, और वो वाला हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। इस फिल्म के गाने लिखे थे समीर साहब ने, और एक नया सिंगर इंडस्ट्री को मिल गया था, वो थे अभिजीत भट्टाचार्य। कमाल के गाने, उनके हर गाना इतना जबरदस्त था कि सीधे दिल में उतर गया, और वो आज तक दिल में ही है। जैसे इन गानों को सुनेंगे आप गुनगुनाने लगेंगे। ये है यादों की ताकत। बागी फिल्म सलमान खान के लिए भी दूसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, और इस तरह से सलमान खान और आमिर खान का करियर लगभग एक ही टाइम पर परवाज भरने लगा था। सलमान खान के साथ उनकी हीरोइन थी नगमा, और नगमा की ये पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी बागी और रेबल फॉर लव। अब देखिए, जिसका डेब्यू इतना कमाल का हो उसे हिट तो होना ही था। 2000 में उन्होंने एक बुटीक भी खोला था नगमास, वो बहुत हिट हुआ था, लेकिन क्योंकि उनके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, 2005 में उनकी डेथ भी हो गई, तो नगमा ने फिल्मों से तो दूरी बनाई ली थी, और ये बुटीक भी अब उनका बंद हो गया था। आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रही है आजकल वो, तो चलिए हम भी कुछ आर्ट सीख लेते हैं, और इन नगमों के साथ इस यादों की कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आपसे अगली मुलाकात करूंगा, कुछ और यादें लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सुनते रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले वही बात, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और अपने आसपास की जो चीजें और लोग दिख रहे हैं ना, इनका भी ख्याल रखिएगा। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, टेक केयर।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl.

0: ना खेला ना खेला
1: तोरी शपथ मैं उमरिया की थोरी।
0: हाय हाय हाय हाय चाचा
1: खट जिंच खट जिंच खट जिंच खट जिंच।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: क्या हुआ?
4: वो तो
3: क्यूट है ना?
4: अरे पहलवान है,
3: पर तुमसे प्यार करती है।
4: हो नहीं सकता।
3: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
4: हो नहीं सकता।
3: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
4: ये हो नहीं सकता।
5: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो, कूल मी डाउन।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: फिर से बिल्कुल मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग। 7 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 7 मिनट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा बिल्कुल पहुंच चुकी है। मैंने कहा था ना, मैं कुछ घंटों के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी। एंड जस्ट इन केस अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बताना चाहती हूँ कि ट्यूजडे मॉर्निंग है। जी हाँ, मंडे के बाद वाला ट्यूजडे। आई नो छुट्टी वाला मंडे है ना सपना जी, जो एकदम संडे टाइप फील हो रहा था, लेकिन अभी सभी बैक टू नॉर्मल हो चुका है। फीलिंग वैसे वाली आ चुकी है और मैं भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। मस्ती का मंत्र बिल्कुल शुरू हो चुका है यहाँ पर। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि ये सही ठीक ही होता है कि हमारी कोई ऐसा छुट्टी तो थी नहीं, है ना। हम तो अपने नॉर्मल काम पे आए थे, तो हमें वो वाली फीलिंग आई नहीं। हम वो फील सिर्फ वीकेंड के टाइम पे करते हैं कि यार अब वीकेंड इतना जल्दी। और सच में छुट्टी वाला दिन कैसे निकल सा जाता है नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ खुशी का जो है एक क्विक डोज कैसे मिलता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आई थिंक आई लव क्लिकिंग वीडियोस एंड कैप्चरिंग मोमेंट्स एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स। मेरी गैलरी इस तरह से, इस कदर से फुल हो रखी है। बट क्या है कि कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप लो फील कर रहे हो ना, अपनी गैलरी के जस्ट गो टू द वेरी शुरुआत ऑफ दैट। कभी कभी कुछ ऐसे रैंडम पिक्चर्स और ऐसी रैंडम वीडियोस आपके सामने आएंगी दैट इट विल मेक यू स्माइल एंड यू विल गो ओ माय गॉड, ये कब हुआ, ओ माय गॉड ये कब की फोटो है। इट्स द सेम थिंग जब बहुत पुरानी कोई फोटो हाथ में लगती है, आप अपने घर वर में जाते हो, कहीं से निकल आती है एल्बम वगैरह से, तो वो देखकर जो फील होता है, इसका भी डिजिटल फीलिंग है, बट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज द सेम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैंने सुबह सुबह एक वीडियो देख लिया, बहुत पुराना वीडियो ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड व्हाट crazy things we did this one night, oh my god, and it just instantly brought a big smile on my face and I immediately sent it to the friends who were there in the video. I'm like, hey, do you remember this? And yeah, it's just jab khud khush ho to dusro ko bhi khush kar dena chahiye, hai na. Tarkeeb hai, that's the song coming up next on Radio Masti 24/7 Live. Good morning.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
3: 7:21 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंतरा आपके साथ, यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। मैं ये कह रही थी कि बिकॉज आपको तो पता ही है दैट हमने ये जो शो शुरू किया है डियर मस्ती दिल से, सो उसके चक्कर में आजकल ना काफी कुछ पढ़ना हो रहा है। सो आई रीड अ लॉट अबाउट दीज वेरियस काइंड ऑफ थ्योरीज विच आर देयर, एंड सरप्राइजिंगली मतलब अच्छा होता है, इसीलिए कहते हैं लोग किताबें पढ़ लिया करो, ये सारी चीजें कभी कभी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। सो देयर वाज दिस थ्योरी आई केम अक्रॉस, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, डियर मस्ती में तो हम लोग लेटर्स पढ़ते हैं, बट लेट मी टॉक अबाउट इट ऑन माय शो। सो इट्स कॉल्ड द बिटर कॉफी थ्योरी। ओके, तो आपने ब्लैक कॉफी कभी पी है? अगर नहीं पी है, जिन्होंने पी है दे नो द टेस्ट, आई हैव ट्राइड, आई नो द टेस्ट। सो ब्लैक कॉफी जो होती है ना, पहले सिप में थोड़ी सी कड़वी लगती है, और हम करते क्या है कि चलो इसमें थोड़ा सा शुगर डाल के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूध डाल के देखते हैं कि बिटरनेस जो है ना वो कम हो जाए, कोशिश, राइट। लेकिन लाइफ में हम कभी कभी एग्जैक्टली यही सेम चीज करते हैं। कोई अगर दोस्ती है, कोई फ्रेंडशिप है, हमें वो इमोशनली ड्रेन कर रहा हो, या कोई रिलेशनशिप हम उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, या कोई सिचुएशन बार बार स्ट्रेस दे रही हो, फिर भी हम एक्सक्यूजेस शुगर की तरह डालते रहते हैं कि शायद सिचुएशन बदल जाए, शायद वो बदल जाए, थोड़ा और टाइम दे देते हैं, बस एक और चांस, और धीरे धीरे हम रियलिटी को मीठा करने की कोशिश करते रहते हैं। सो बिटर कॉफी थ्योरी कहती है कि हर चीज को फिक्स करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी ग्रोथ तब आती है जब हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो है, एंड एक्सेप्ट करना कि कुछ सिचुएशंस हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, एंड दैट्स नॉट वीकनेस, दैट्स विजडम। वैसे भी एक्सेप्टेंस का मतलब गिवअप करना नहीं होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है दैट आपने सच को पहचान लिया है, फिर अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगाना जो है वो आपके हाथ में है, वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट और यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट। सो हर कड़वी चीज को मीठा बनाना जरूरी नहीं है, कभी कभी उसे पहचानना और उसे दूर उससे चले जाना सबसे मीठा मीठा डिसीजन होता है। नहीं है ना, इंटरेस्टिंग, सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन इन दिस बुक कॉल्ड लव फॉर इम्परफेक्ट थिंग्स, इट्स जस्ट अमेजिंग, या एंड नो वंडर आई एम लाइक loving the reading bit about all of these things. Well, aaj shaam ko hai hamara ek aur episode of Dear Masti Dil Se, make sure that you tune in. But filhaal ke liye chaliye lete hain ek chhota sa ek aur musical break, and I will be right back on Radio Masti 24/7 live. Good morning.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आई आपको बताया जाए ट्रैफिक का हाल चाल इस वक्त क्या हो रहा है. हेवी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा उनके जेई टू वर्ड्स पी आई ई बिफोर पी आई ई टू एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन जलान बुकेट

0: 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joyalukkas, the world's favorite jeweler.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: That's right. Good morning. Good morning. चलिए चलिए शुरू करते हैं अपडेट्स लेना. What's happening where? Radio Masti 24/7 live पर अंतराब के साथ and यहाँ पर सिंगापुर से शुरू करते हैं. See, हम सब रोज इंटरनेट यूज करते हैं, right? मैसेजेस भेजते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, वीडियो स्ट्रीम करते हैं. But have you ever wondered कि ये सब actually connected कैसे रहता है? So most people think that satellite handle करती है ये सारी चीजें, but रियलिटी ये है कि दुनिया का बहुत सारा इंटरनेट का ट्रैफिक समंदर के नीचे बिछी हुई अंडर वाटर केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है. और इसी वजह से रिसेंटली सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ. डिफेंस मिनिस्टर चान चुन सिंह, उन्होंने कहा कि कंट्रीज को मिलकर क्रिटिकल अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना होगा, बिकॉज दीज केबल्स एंड पाइपलाइंस आर नॉट जस्ट वायर्स अंडर वाटर, दे आर लिटरली द बैकबोन ऑफ आवर कम्युनिकेशन इकोनॉमी एंड डेली लाइफ. 17 कंट्रीज हैव नाउ कम टुगेदर अंडर अ न्यू फ्रेमवर्क called guide to strengthen this cooperation and security around these underwater systems. Sochiye, agar ek bhi cable damage ho jaye to banking system, communication networks aur businesses sab impact ho sakte hain. And shayad isiliye that like kehte hain that strongest things in life are often the ones we don't even see. कभी कभी ना मैं बात करते करते खुद ही इतनी अच्छी बात कह जाती हूँ, फिर लगता है कि ये तो अच्छा कह दिया मैंने. यू नो एक्चुअली इट इज सो ट्रू, राइट? द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स इन लाइफ्स आर ऑफ्टन द वंस वी डोंट इवन सी. जैसे ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंडशिप्स एंड ऑफकोर्स दीज अंडर वाटर केबल्स. सो सब कुछ सर्फेस पर विजिबल नहीं होता, दे क्वाइटली कीप आवर वर्ल्ड कनेक्टेड. सो या Let's appreciate the unseen connections, ये भी and अपनी life में भी, है ना? बहुत ही अच्छी बात कहती हूँ. Radio Masti 24/7 live पर. Let's move on. Raghu Dixit coming up next from the movie Chef. हालांकि ये movie नहीं चली, but the song is quite nice on Radio Masti 24/7 live. Good morning.

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
6: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
7: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
8: डूड, everybody wanted mangoes, so they gave you more mangoes and more variety of mangoes. Can you imagine? I cannot. It's unbelievable. Kya chahte hai GG Mart wale? Oh my God, how can I resist? Radio Masti 24/7 live on Tribe ke saath aur main yahan hoon. Masti ka mantra chal raha hai. Beautiful Tuesday morning hai. Kamal ki khabar laye ho ki bhai, itne dino se hum aapko bata rahe the ki ye Devgarh aur Ratnagiri ke mangoes jo hai wo GG Mart online se aap order kar sakte hai. Alfonso hai. बट अब लोगों ने कहा, इतना सही रिस्पॉन्स उनको मिला, फिर सबने कहा कि और चाहिए, हमें और वैरायटी चाहिए, इससे क्या होगा हमारा. सो यस, इवन विद मोर गुडनेस. ओके, बदामी, दशहरी, लंगड़ा, पैरी, मलिका, कुछ छोड़ा है नहीं, बट इट्स It's amazing. Right here in Singapore, we are getting all this farm fresh, organic, no preservatives, mango varieties. I think this is just insane. Okay. Bahut hi zyada kamal hi kar diya hai GGMartOnline.com ne. So, well, aap bilkul wait na kare. Ab jab aapko bhi pata chal gaya hai ki there are even more varieties of aam which you can taste right here apne ghar mein baithe hue. Just make use of this mango magic. Log on kare GGMartOnline.com par and bindas. आम ऑर्डर करें. और अगर आपके पास आपने ऑर्डर ऑलरेडी किया हुआ है, डू लेट अस नो कि कैसे लगे आपको. वी आर ऑलवेज ओपन फॉर आपके फीडबैक एंड एवरीथिंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो बनता है, लंगड़ा बनता है ना. आपने ट्राई किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली बनता तो है. गुड मॉर्निंग.